आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:58 और 20 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा। आपका दिन शुभ हो,

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी समाचार आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारी दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों की बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया।

0: इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सांप के दांतों में विष है, लेकिन जब वो स्वयं खाता है तो उस पर विष का असर नहीं होता, किंतु जब दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वो उन्हें मुग्ध नहीं कर सकती, किंतु सारे संसार को मुग्ध कर लेती है। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। ये देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खूब हंसने लगे और नाचने लगे। उनकी ये अवस्था देख श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सर्जन कर डाला। फिर ब्रह्म के निश्वास मात्र से वो जाने कहां ओझल भी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण ये संभव न था। तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाएं। सीता के थोड़ा बाजू हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई, उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट न जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं पा सकता। एक साधु हाथ में कांच की नली का एक टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल, नीले, पीले आदि कई रंग दिखाई देते हैं, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार ये संसार सत्य प्रतीत होता है।

है मिथ्या ही, यही सोचकर वे हंसा करते थे। हरि जब सिंह का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वो अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह की सी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है तो वो बच्ची चौंक कर मारे डर के चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरि का मुखौटा हट जाता है तो तुरंत वो घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी ओर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है, अरे ये तो भैया हैं। मनुष्यों का भी यही हाल है, माया के आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है, फिर भी माया की शक्ति से लोग मुग्ध और भयभीत होकर कितनी ही चीजें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से ये माया का पर्दा हट जाता है तब वो भयंकर कठोर शासक के रूप में प्रतीत नहीं होता, तब तो अपनी ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर हमें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा। अगर हम पानी देखना चाहते हैं तो तालाब पर से काई हटा दें। माया के पर्दे से ढके हुई आंखों से देखकर हम लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते। अगर हम ईश्वर को देखना ही चाहते हैं तो आंखों पर से माया का पर्दा हटा लें। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक देता है उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं।

आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के गाए इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कार्यक्रम विवरण के तहत आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। 7:30 का समय होगा कार्यक्रम गीत संगीत का। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे अपने राज्य केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय। प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। 3 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

4:38 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: संध्या 5:02 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। संध्या 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 6:02 का समय होगा कार्यक्रम युवाणी का। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। संध्या 7:00 प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार। 7:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9:00 News@9 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:54 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। संसदा 26,000 सर्वोच्च न्यायालयस्य संशोधन विधेयकं पारितम्। यत् चर्चोत्तरं राज्यसभया तत् पुनः लोकसभायै प्रेषितम्। लोकसभया एतद् विधेयकं गत सोमवासरे एव पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्च न्यायालयाधिनियमः 55/1900 इत्यस्मिन् संशोधनं भवति। लोकसभया बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 26 इति पारितम्। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक अभिलेखानां साक्ष्य सम्बद्ध नियमं आधुनिकीकांकीय बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुमस्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् बैंक अभिलेखस्य वैद्युतिकः उत वा आंकिकीयाभिलेखः साक्ष्यरूपेण ग्रह्यः वैधः तथा विधितः प्रवर्तनीयः भविष्यति। लोकसभायाः कार्यम् अपराह्णे 2 प्रथम स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धे सति केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण एतत् विधेयकं प्रास्तौत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते कथा कथनस्य समृद्धा परंपरा तथा सृजनात्मक प्रतिभायाः विपुलः निधिः वर्तते, यस्य उपयोगेन भारतं वैश्विक सामग्री निर्माणस्य प्रमुख केन्द्र रूपेण विकसितुं शक्यते। असौ सामाजिक संचार पटले संसूचितवान् यत् नवदिल्ल्यां नेटफ्लिक्स इत्यस्य सह मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा टेड सैरंडोज इत्यनेन सह असौ मेलनं कृतवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् तयोः मध्ये भारतस्य मनोरंजन क्षेत्रस्य विशाल संभावना विषये अपि विस्तृतः विचार विमर्शः अभवत्। विश्वस्य प्रमुख सामाजिक माध्यम मञ्चानां मूल संस्थायाः मेटा इत्यस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा मार्क जुकरबर्ग इत्यनेन बाल यौन शोषण सामग्री तदनुषंगिक सामग्री कृत्रिमतया निर्मित सामग्री चेत्येषु अथ मञ्च संचालने च जात दोषान् अधिकृत्य भारत प्रशासनात् क्षमा याचिता। सूत्राणामनुसारं मेटा संस्थया स्वीकृतं यत् केषाञ्चन प्रकाराणां सामग्रीणां प्रचाराय बहुधनराशिः व्ययिता।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय है ग्लूकोमा रोग, कारण, लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार हैं नेत्र चिकित्सक डॉक्टर शेफा हबीब, भेंट करता है प्रमेंद्र कुमार मिश्रा।
1: श्रोताओ, ये आंखें हैं जिससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और ये नेत्र जो है दोस्तों, ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। कैसे हम अपने आंखों को सही सलामत रख सके और इससे हम दुनिया को देख सके। ग्लूकोमा एक नेत्र रोग है और सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ग्लूकोमा से अंधापन का कारण बन सकता है। ग्लूकोमा की जागरूकता के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ग्लूकोमा के बारे में आज हम बातचीत करेंगे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के नेत्र चिकित्सक MS डॉक्टर शेफा हबीब से। तो सबसे पहले आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: आप हमें ये बताइए कि ये जो ग्लूकोमा बीमारी है ये क्या है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप हमें दें।
2: ग्लूकोमा बीमारी जो है वो बहुत ही खतरनाक है, सेकेंड कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं वर्ल्ड में, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसकी रोशनी कम हो रही है, क्योंकि ये सबसे पहले पेरिफेरल विजन को ही इफेक्ट करता है। एक्चुअली इसमें इसको हम ग्लूकोमा जो कहते हैं वो हमारे आंख की नस की बीमारी है, जिसमें धीरे धीरे नस मर जाता है। उसका एक कारण है आंखों का प्रेशर बढ़ना। हमारे आंख में पूरी जिंदगी एक्यूस ह्यूमर प्रोड्यूस होती है और सिक्रेट भी होती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है और आंखों से निकल जाती है, एक आकार देती है। लेकिन बहुत सारे रीजन की वजह से अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वो निकल नहीं पा रहा है, या तो आकार में कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ अलग से दिक्कत हुई जिसकी वजह से उसमें दिक्कत शुरू हो गई आंख में,
1: तो हाँ
2: तो उस वजह से उसकी आंख प्रेशर बढ़ी और आंख की नस को उसने अफेक्ट किया, जिससे उसकी न्यूट्रिशन अफेक्ट हुई और उससे आंख की नस मर गई।
1: इसे हम साइलेंट थीप ऑफ साइट भी कहते हैं,
2: क्योंकि पता ही नहीं होता है। ये धीरे धीरे रोशनी को चुरा लेता है, चोरी कर लेता है,
1: धीरे धीरे करता है ये काम, इसलिए
2: पता नहीं चलता। और जब फाइनली जब पेशेंट को पता चलता है कि मेरी नजर कम हो रही है और जब वो हमारे पास आते हैं तो जो बचा हुआ विजन है हम उसे ही बचाने की कोशिश कर पाते हैं, क्योंकि जो लॉस हो गया वो वापस नहीं आता
1: है। तो ये तो हो गया कि मतलब किस कारण से होता है और किस तरह से वो धीरे धीरे हमारा नजर कमजोर होता है और हम धीरे धीरे ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ते हैं, और लेकिन ये प्रक्रिया काफी धीमी है इसीलिए ये पता नहीं चल पाती है लोगों को। और जो लोग इसके बारे में थोड़ा जागरूक हैं, और लोगों को जागरूक होना भी चाहिए कि अगर कुछ नेत्र में अगर परेशानी हो

0: है तो हम तुरंत जो है किसी चिकित्सक से परामर्श ले लें ताकि समय पर इसका जो है उपचार किया जा सके। और इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि आंखों की जो देखभाल है वो किस तरह से करनी चाहिए, नियमित देखभाल और चिकित्सक से मिलना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, ये कितना जरूरी
1: है? ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। लोग आँख की रोशनी के लिए चश्मा बदलते हैं लेकिन कोई अपने प्रेशर के लिए नहीं आते हैं। अगर आप नॉर्मली भी किसी आई स्पेशलिस्ट से मिले, स्पेशली आई स्पेशलिस्ट से, तो एक स्क्रीनिंग के तौर पर हमेशा अपना प्रेशर नपवाइए। और प्रेशर से हमें पता चल जाता है कि उसकी प्रेशर बढ़ी है कि घटी है।
0: इसके लिए इस जांच को क्या कहते हैं?
1: ये इसको हम लोग कहते हैं आईओपी मेजरमेंट होता है। ये कॉन्टैक्ट भी होता है और नॉन कॉन्टैक्ट भी होता है, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट और जो करते हैं हम लोग एयर पफ के थ्रू करते हैं। और अगर गोल्डमैन टोनोमेट्री करेंगे, हमारे एसबीएमसीएच में भी हम लोग प्रेशर नापते हैं, तो वैसे हम लोग पता करते हैं कि आईओपी का नॉर्मल है कि बढ़ गया। लेकिन एक और बात, बहुत बार ऐसे भी पेशेंट हैं जिनकी आईओपी नॉर्मल होती है लेकिन उनको फिर भी ग्लोकोमा की दिक्कत होती है। हम लोग उसमें फंडस एग्जामिनेशन भी करते हैं, पीछे का हिस्सा देखते हैं, फंडस में देखते हैं कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा ऑप्टिक नर्व कफ में। फिर साथ में हम विजुअल फील्ड एनालिसिस भी करते हैं। ये तीनों चीज के बाद ही हम फाइनल डायग्नोसिस में जाते हैं कि पेशेंट को ग्लोकोमा हो गया, और इस तरीके से फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक आम आदमी के लिए यही है कि आपके घर में मम्मी पापा, ये क्योंकि जेनेटिक भी होता है, ये सिस्टर्स में जी हाँ, तो अगर किसी घर में अगर किसी को पता चल गया है कि उनको ग्लोकोमा है तो वो अपने सबको परिवार सहित आए और अपनी आंख की जांच करवाए
0: ताकि उनको भी समय पर उसका इलाज हो सके।
1: क्यों जो शुरू नहीं हुआ है उसे पहले ही हम रोक सकते हैं क्योंकि ये तो इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन होता है
0: और ये फिर रिकवरी नहीं हो सकता।
1: हाँ, यही सबसे खराब बात इस बीमारी का यही है कि हम पेशेंट की रोशनी वापस नहीं ला पाते जो चला गया।
0: अब यहाँ शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में आप बतौर यहाँ चिकित्सक हैं और यहाँ आमतौर जो लोग जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, मरीज आते हैं, तो उनको कैसे आप मतलब अलग करते हैं कि ये पेशेंट जो है ये ग्लूकोमा की तरफ जा रहा है?
1: ग्लूकोमा में दो तरह के होते हैं, जैसे कि मेडिकल टर्म में हम बात करते हैं कि ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा, जिसमें बहुत बार शेख भिखारी में मैक्सिमम पेशेंट ऐसे आते हैं जो अक्यूट केस, मतलब उनकी आंख पूरी लाल होती है, पूरे आंखों में दर्द होगा, देखने में दिक्कत होता है। तो हम जब उनके ये पूरे इमरजेंसी कंडीशन में मैक्सिमम पेशेंट आते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि उनको उसको हम कहते हैं अक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा। वो इमरजेंसी केस होता है जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करके हम उनका आईओपी नॉर्मल करके फिर मेडिकेशन और फिर फर्दर मैनेजमेंट का प्लान करते हैं। और अगर नॉर्मली पेशेंट हम हमारे पास जो आते हैं, जो हम हमको लग रहा है कि इस उम्र में इनकी इतनी रोशनी होनी चाहिए और चश्मा से भी उनकी रोशनी सुधार नहीं हो रही है, तो ये हमारे यहाँ हमेशा एकदम रेगुलर है कि हम उनका फंडस एग्जामिनेशन करेंगे। और फंडस एग्जामिनेशन में जैसे ही हमें ऑप्टिक नर्व चेंजेस दिखता है, हम उसी तहत फिर आगे ट्रीटमेंट प्लान में हम तुरंत सारा VFA एंड एवरीथिंग करना शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है।
0: आरंभिक काल में जब ये आपको पता चल जाता है कि ये ग्लूकोमा है, तो क्या आप कुछ ये प्रयास करती हैं कि दवाइयों के माध्यम से हम इसको ठीक कर सकें? और आप एक बतौर एक शल्य चिकित्सक भी हैं, तो ये कैसे आपको लगता है कि ये दवा से नहीं ठीक होगा, इसके लिए कुछ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होगी?
1: जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओपन एंगल भी है, क्लोज एंगल भी होता है, और भी बहुत तरह के होते हैं, चाहे पीडियाट्रिक ग्लूकोमा भी होते हैं। तो अगर ओपन एंगल है, पहले तो हमारी हमेशा टारगेट होती है कि हम मेडिकल मैनेजमेंट ही करें, मतलब हम ड्रॉप से ही ठीक करें ग्लॉकोमा के। जब हमारे ड्रॉप से भी उस पेशेंट का टारगेट आईओपी हमें अचीव नहीं हो पा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। ठीक, तो सर्जिकल में तो बहुत एडवांसमेंट भी आ गया है। और अगर जैसे क्लोज एंगल है, क्लोज एंगल ग्लॉकोमा पेशेंट को जब हम डायग्नोज करते हैं तो उसमें तो हमें शुरुआत से ही, जैसे कि हम लेजर पेरिफेरल एनाटॉमी कर देते हैं हम उनका एलपीए एनडीआर के थ्रू, और फिर मेडिकल ड्रॉप देते हैं। पहले हमारा ड्रॉप ही होता है मेडिकल मैनेजमेंट, अगर उससे कंट्रोल नहीं हो पाएगा तभी हम सर्जिकल मैनेजमेंट में जाते हैं।
0: तो इसके लिए किस तरह से शल्य चिकित्सा आप करती हैं और ये क्या महंगा है या मतलब ये उपलब्ध है मतलब आपके हॉस्पिटल में या सरकारी तौर पर, या फिर इसके लिए अलग कोई व्यवस्था करनी पड़ती?
1: थायमल जी, थोड़ा मशीन मीडिएटर से तो कॉस्टली तो है ही, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट मेडिकल मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो पेशेंट को दवा लिखते हैं, वो अवेलेबल भी है तो वो डालते हैं। बस यही होना चाहिए कंप्लायंस, मतलब वो अपनी दवा सही समय पे लेना है, और जब हम उनको बुला रहे हैं तो उनको फॉलोअप में आना है, और जो टेस्ट है वो कंप्लायंस।

0: साइंस अगर पेशेंट का अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन अगर उससे भी पेशेंट तब भी नहीं हो पा रहा है तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जाना होता है। तो ट्रैबिक लेक्टोमी तो हम लोग के यहाँ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि माइक्रोस्कोप आ गया है तो ग्लोकोमस पेशेंट, लेकिन बाकी सारी चीज के लिए तो मशीन की जरूरत होती है और फिर एडवांस तो थोड़ा सा अभी एसडीएम स्टेजेस में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। पेशेंट को ये लोगों को ये अवेयर होना होगा कि आंखों में दर्द, अगर आपके आईज में पेन है या फिर कभी कभी आपको
1: ये उसका लक्षण बता,
0: हाँ कलर्ड हैलोज हम बोलते हैं, रेनबो की तरह कलर कुछ दिखता हो, आंखों में दर्द बीच बीच में या फिर अंधेरे कमरे में बैठे हैं या कुछ मूवी और या घर में टीवी देख रहे हैं और फिर बाहर निकलते हैं तब आंख में दर्द बढ़ जा रही है बहुत ज्यादा, या सडनली आंख में बहुत लाल हो गया, बहुत पेन है, वोमिटिंग तक हो जाता है, आंख का जांच कराना चाहिए क्योंकि ये सब भी कारण है आईओपी बढ़ने का। दूसरी बात, जितना जल्दी वो आएंगे और अपने लिए अवेयर रहेंगे, अगर उनके घर फैमिली एरिया में भी किसी को ग्लॉकोमा डायग्नोस्ड है तो उनको एक बार जरूर हॉस्पिटल आना चाहिए अपनी स्क्रीनिंग के लिए। अगर वो स्क्रीनिंग का ये फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि आपको एक्चुअली में अभी शुरू हुआ है कि नहीं,
1: अभी सही समय पर आप, हाँ, तो क्योंकि
0: दवा से देखिए जो भी ट्रीटमेंट प्लान है ना हमारे मेडिकल और सर्जिकल, ये जो रोशनी चली गई उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, जो है उसको हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो वो जितना जल्दी जाएंगे, जितना अच्छा से अपने डॉक्टर से कम बात इंटरेक्शन रहेगा उनका, उनके लिए बेस्ट।
1: डॉक्टर सिफा हबीब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा और उन श्रोताओं तक ये बात पहुंचे आपके माध्यम से कि जो भी चाहते हैं कि हमारा आंख जो है बहुत अच्छा रहे, हम लंबे समय तक अपने आंख से दुनिया देख सके, अपने लोगों को, अपने चहेते लोगों को देख सके, तो उसके लिए हम जो है नियमित जांच करवाते रहे, तो इसके लिए लोगों को आप किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे?
0: मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि वो जरूर आई स्पेशलिस्ट से मिले और वो अपना नियमित जांच करवाए और सिर्फ चश्मा का पावर लेके ना खुश रहे क्योंकि आंख में बहुत सारी चीज होती है, तो क्योंकि ग्लोकोमा क्योंकि धीरे धीरे जाता है तो बहुत अफसोस भी लगता है जब पेशेंट एंड में आते हैं उनकी रोशनी हम नहीं बचा सकते। इसका बस यही है कि आप जागरूक रहने के लिए कि आप अपनी आंख की जांच परामर्श रेगुलरली इंटरवल पर कराना हो चाहिए।
1: तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर नियमित जांच करवाते रहें तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो आंख का जो चश्मा का पावर है वो भी पता चलेगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है। कुछ गंभीर बीमारी होता है तो सही समय पर उसकी जो है सो चिकित्सा हो सके, इलाज हो सके।
0: ये तो बड़ों के लिए है।
1: जी, और बच्चों के लिए भी हाँ। कुछ बताना चाहेंगे तो आप बता।
0: ये तो मैंने जो तक बड़ों के लिए स्पेशली अगर बच्चे न्यू बॉर्न बेबी और जो छोटे बच्चे जिनके आंखों की आकार थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है या आंखों में अजीब सफेदापन टाइप का अगर ओपेसिटी दिख रहा, छाला जैसा लग रहा हो, या फिर बच्चा रोशनी में जाना पसंद नहीं करता, वो बहुत रोता हो और डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो बच्चों क्योंकि पीडियाट्रिक ग्लॉकोमा भी बहुत डेंजरस है, जितना जल्दी उसका मैनेजमेंट हो उतना अच्छा होना चाहिए। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कि वो भी तुरंत ही डॉक्टर से मिले। वो
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बच्चों में भी अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसके लिए परामर्श ले सकते हैं चिकित्सक से। और डॉक्टर सिफा हबीब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने जागरूक भी किया लोगों को ताकि सभी जितने भी हमारे ग्लूकोमा के संभावित मरीज है नियमित जांच करवा सके ताकि वो किसी गंभीर बीमारी के जद में ना आए,
0: और चश्मा नहीं पहने वो भी,
1: और जो चश्मा नहीं पहने वो भी सही समय पर नियमित जांच करवाते रहे ताकि किसी गंभीर बीमारी का खतरा भी है तो सही समय पर उनका इलाज किया जा सके। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपना बहुमूल्य बेशकीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: थैंक यू।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता में आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, ग्लूकोमा रोग कारण लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार थी नेत्र चिकित्सक डॉक्टर शिफा हबीब, भेंट करता थे प्रमेंद्र कुमार मिश्रा। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।
3: Complete graffiti wall.

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत, सुनवा रहे हैं अरमान मल्लिक की आवाज में ये गीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जलडमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
4: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
3: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
5: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
6: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग

0: बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देशभर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण

0: चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
1: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में न आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मूज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मूज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार।

चल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित हुर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somanathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moves 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
3: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
4: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, विपक्ष परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सरकार को घेरेगा, सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब देने को तैयार। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा धांधली की जांच के लिए 4 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, वार्ता के लिए छात्रों को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के धुरवा में 58 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। राज्य की फायर सेफ्टी व्यवस्था होगी मजबूत। राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। अगले 4 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमका झारखंड का 13 वर्षीय अरहान आलम, विश्व मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला यह सत्र काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर ली है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में जेपीएससी परीक्षा विवाद पर एनडीए सरकार को घेरेगा। रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री से इस्तीफे और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग करने का निर्णय लिया गया है। श्री मरांडी ने परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है।
1: मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी और जेपीएससी में जो गड़बड़ी, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये छात्रों की नहीं है, नौजवानों की नहीं है, ये मांग संपूर्ण झारखंड वासियों की है।
0: इधर रांची के एटीआई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों की भी बैठक हुई। आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए रणनीति तैयार की गई है। बैठक में सरकार ने विपक्ष को छात्र आंदोलन पर करारा जवाब देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को सुलझाने के लिए 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सुदिव्य कुमार, चमरा लंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल हैं। इसके साथ ही कार्यवाही को सुचारू रखने के लिए अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को भी नियुक्त किया गया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का छात्र आंदोलन पर सकारात्मक रुख है।
2: भी बोला है, एक कमेटी भी बनाई गई है और छात्रों तक यह संदेश भेजा गया है कि वो सरकार वार्ता के लिए तैयार है। वो अपना प्रतिनिधि मंडल एक तय करके बताए और उन लोगों से सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो बात करने के लिए तैयार है। तो ये संदेश हम लोगों ने भेजा है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि छात्रों का क्या डेलीगेशन तय होकर के कब तक आता है।
0: रांची के जयपाल

0: भोपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन भी जारी है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के एसडीओ के माध्यम से छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव भेजा था।
1: माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे।
0: हालांकि सरकार के प्रस्ताव को छात्रों ने स्वीकार नहीं किया। आंदोलनकारियों की मांग है कि मुख्यमंत्री खुद धरनास्थल पर आकर पारदर्शी और खुली बातचीत करें। सरकार से वार्ता के लिए छात्र आज फैसला ले सकते हैं।
2: पिछले 12 दिन से हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के नेता लोग प्रत्यक्ष रूप से आके मिल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर ये नैतिकता होनी चाहिए कि आप भले नहीं आ रहे लेकिन एटलीस्ट मंत्री के द्वारा तो कम से कम हम लोग से मिलने तो आए और उसी बहाने बात भी रखे कि आपसे वार्ता करना चाह रहे।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार से परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि विवादित एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के धुरवा में आधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मिस्ट टेक्नोलॉजी से लैस इन 58 वाहनों से राज्य की फायर सेफ्टी व्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे धुरवा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। राज्य में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 43 लाख से अधिक फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब राज्य में कुल 2 करोड़ 21 लाख मतदाता बचे हैं। नागरिक 4 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
3: जनरेशन फेज का बात अभी ड्राफ्ट रोल में 2,21,1249 वोटर्स है। हम लोग का एनुमरेशन फेज कम्प्लीट होने इसमें एएसडीडी सोची का कैटेगरी में 43,61,987 वोटर्स का वो एएसडीडी सूची में है, इनका नाम ड्राफ्ट रोल से रिमूव कर 5 अगस्त से 4 सितंबर तक नया वोटर ऐड करने के लिए उसमें कोई करेक्शन होगा मतलब उसका करने के लिए किसी का ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
0: रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 अगस्त से झारखंड जतरा महाउत्सव शुरू हो रहा है। 2 दिनों के इस भव्य आयोजन में 33 जनजातियों का सांस्कृतिक संगम देखने को मिलेगा। इस उत्सव में राज्य भर के 6,000 से अधिक कलाकार अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां देंगे। और अब मौसम का हाल। राज्य में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात से 20 लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 11 मौतें गिरिडीह जिले में हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भारी वर्षा और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है। झारखंड के 13 वर्षीय मार्शल आर्ट खिलाड़ी अरहान आलम ने नई दिल्ली में आयोजित 18वीं विक ऑफ वर्ल्ड अर्नेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 27 देशों की भागीदारी वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर अरहान ने देश और राज्य का नाम रोशन किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को खत्म कराने की दिशा में सरकार के प्रयासों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है सीएम ने दिया वार्ता का न्योता, छात्रों का बंद कमरे में बातचीत से इनकार। हिंदुस्तान के शब्द हैं जेपीएससी मामले में 3 अभ्यर्थी समेत 5 गिरफ्तार। प्रभात खबर की सुर्खी है एक्शन में सरकार, सीएम बोले जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे का ठोस समाधान निकालेंगे। दैनिक जागरण लिखता है 43 लाख

61,987 मतदाताओं के नाम कटे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, विपक्ष परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सरकार को घेरेगा, सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब देने को तैयार। जेपीएससी और जीएसएससी परीक्षा धांधली की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने 4 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, वार्ता के लिए छात्रों को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के धुरवा में 58 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना, राज्य की फायर सेफ्टी व्यवस्था होगी मजबूत। राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत, अगले 4 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमका झारखंड का 13 वर्षीय अरहान आलम, विश्व मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
2: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी का।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 8:44 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय। आज आप सुनेंगे इसका पांचवा भाग।
1: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजन्स केयर सिस्टम वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस बाय डॉक्टर आभा चौधरी फाउंडर सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन अनुग्रह RRTC। This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care का, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहरों में हो, उसके प्रति जागरूकता करनी हो या policy makers, NGOs, civil society या wider society को इसमें integrate करना हो, एक broad picture कि भारत धीरे से ही सही पर aging tsunami की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बेहतर medical सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है। यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए कि ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन हम जरूर देख रहे हैं। 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा डॉन्टिंग होते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो घर से ज्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज ज्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन NGOs इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन है, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं।

0: वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के? तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं। एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति, उनका हाइजीन, उनकी डेली जरूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पे इसके बहुत ज्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो समय पे अपनी वसीयत बनाएं, अपने नाम पे सेविंग्स रखें और चीजों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर, Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस।
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं, तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व

नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व है। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना, जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियां उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और उसमें एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और जितने आपके सर्कल है उसमें जरूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जेनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स विमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में, एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाईकोर्ट के साथ मिलकर भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है, जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल
वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय का आज का भाग। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए अब आपको ले चले हमारी मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। गुलाम फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में। समीर का लिखा गीत है।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा आज के मेहमान लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल के बोल, MM करीम का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाजों में अगला गीत। प्रिया सरैया ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत। चित्रा और केके की आवाजें हैं, गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार अनु मलिक।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह? तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: अगला गीत बेफिक्रे फिल्म से सुना रहे हैं आपको। अरिजीत सिंह की आवाज में जयदीप साहनी का लिखा गीत है, तर्ज बनाई है विशाल एंड शेखर ने।

कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत दे दे प्यार दे इस फिल्म से अरमान मलिक की आवाज है। कुणाल वर्मा ने इस गीत को लिखा है, अमाल मलिक ने संगीत से सजाया है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ लेती हूँ विदा। मैं पूजा नरानिया, नमस्कार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

0: है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये। और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी सत्ता।

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई छप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी ओंकार।

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकारा फिल्म का।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म निशब्द की गाने विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छा

0: अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।
1: इब्ने बतूता

विशाल भारद्वाज अपने खास तरह के सिनेमा के लिए और अपने खास तरह के संगीत के लिए जाने जाते हैं। साल 2011 में वो लेकर आए फिल्म सात

साल 2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंडोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

0: विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हेमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।
1: विजय

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत गाया।

विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी। विशाल भारद्वाज प्रोडक्शंस की एक महत्वपूर्ण फिल्म पिछले दिनों आई और वो फिल्म थी रंगून।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार विशाल भारद्वाज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: लगाओ, देखो देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो।

आज का सुविचार। जीवन एक दर्पण की तरह है, यह व्यक्ति के द्वारा दिखाई गई सकारात्मकता को प्रतिबिंबित करता है। हकीकत का आईना साफ होगा तो गलतियां भी कम होगी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आइए जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमानुसार हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने का अनुमान है। गरज के साथ बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। झारखंड सहित अन्य कई राज्यों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। हजारीबाग में आज का अधिकतम तापमान होगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान होगा 24 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता की बात करें तो लगभग 90% रहने का अनुमान है। आज सूर्योदय का समय था 5:20 और सूर्यास्त का समय है 6:28। कल सुबह सूर्योदय का समय होगा 5:20।

6 अगस्त 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1906 में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्रंजन दास और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। 1960 में आज के दिन क्यूबा ने देश की तमाम संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया था। 6 अगस्त 1962 में जमैका को स्वतंत्रता मिली थी। 1986 में आज के दिन भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। 1996 में नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई थी। 2007 में हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के वृक्ष का जीवाश्म प्राप्त करने का दावा किया था। 2012 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। यह लिटिल बॉय नामक परमाणु बम था। इस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में याद किया जाता है। 6 अगस्त 1991 को वर्ल्ड वाइड वेब के सार्वजनिक शुभारंभ के साथ कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस तकनीकी ने इंटरनेट के माध्यम से वेब पेजों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया और सूचना एकत्र करने और साझा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आइए जानते हैं 6 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 1959 में राजेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे। 1944 में अविनाश दीक्षित का जन्म हुआ था। ये भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। 1921 में के एम चांडी का जन्म हुआ था। 1915 में गुरदयाल सिंह ढिल्लो का जन्म हुआ था। 1933 में ए जी कृपाल सिंह का जन्म हुआ था। ये भारतीय क्रिकेटर थे। 1970 में एम नाइट श्यामलन का जन्म हुआ था। ये भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं। अब आइए जानते हैं 6 अगस्त को जिनका निधन हुआ उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 2019 को निधन हुआ था सुषमा स्वराज का। 2018 में आरके धवन का निधन हुआ था। 2006 में सूरज भान का निधन हुआ था। 2003 में रॉबिन बनर्जी का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता थे। 1997 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का निधन हुआ था। ये असमिया साहित्यकार थे। श्रोताओं, इन दिनों बरसात का मौसम है। हवा में नमी होने के कारण खाने पीने की चीजों में जल्दी फंगस लग जाते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया स्वास्थ्य को प्रभावित तो करते ही हैं, साथ ही इन दिनों मच्छर मक्खियों की अधिकता के कारण भी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। बरसाती मौसम के रोगों से बचना है तो साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ और उबला हुआ पानी पिएं, भोजन ताजा तो होना ही चाहिए, साथ ही पोषण युक्त आहार का भी ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, बारिश के पानी से भीगने से हमेशा बचना चाहिए। इस मौसम में नदी, तालाब, कुएं आदि तो भर ही जाते हैं, लेकिन जगह जगह गड्ढे में, नालों और सड़कों पर भी जल जमा हो जाता है। अधिक बारिश होने पर सड़कों, गली, मोहल्लों में भी पानी भर जाते हैं। ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए जरूरी ना हो तो ज्यादा जल जमाव वाले रास्ते से ना गुजरें। गटर खुला हो या नाला के ऊपर से पानी बह रहा हो या सड़क में बड़े गड्ढे हो तो किसी भी वाहन का या पैदल चल रहे यात्रियों का

एक्सीडेंट हो सकता है, इसके लिए सावधानी ही बचाव है। लोग जागरूक हो तो आवेदन देकर नगर निगम के द्वारा सड़कों की मरम्मत भी करवाई जा सकती है। सड़कों पर चलते हुए ट्रैफिक रूल्स का भी ख्याल रखना चाहिए। श्रोताओं, जान है तो जहान है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखना, मदद करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आज है हिरोशिमा दिवस, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में पहला परमाणु बम बनाया था। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रिनिटी नाम से पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। परीक्षण के कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया। 6 अगस्त यानी आज ही के दिन 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिराया गया। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए। इन परमाणु बम हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। श्रोताओं, परमाणु बम का मानव जीवन पर प्रभाव अत्यंत विनाशकारी, दीर्घकालीन और अपरिवर्तनीय होता है। परमाणु विस्फोट के कुछ ही सेकंड के भीतर लाखों लोगों की जान चली जाती है। भीषण गर्मी यानी लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण इंसान और वस्तुएं तुरंत भाप बन जाते हैं। इसकी तीव्र रोशनी से कई किलोमीटर दूर तक के लोग हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अत्यधिक हवा के दबाव के कारण विशाल इमारतें या घर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। विस्फोट से निकले अल्फा, बीटा और गामा विकिरण इंसानी कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में भीषण आग लग जाती है। जीवित बचे लोगों को कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जिनमें है ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, थायराइड कैंसर, डीएनए का खराब होना, जिससे आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से कमजोर या विकृत पैदा होती है। साथ ही जीवित बचे लोग जीवन भर के लिए गहरे सदमे और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। काला धुआं और राख आसमान पर इस कदर छा जाते हैं जिससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती है। तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है और फसलें नष्ट हो जाती है, जिसमें अकाल और महामारियां की स्थिति बन जाती है। स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त होने के कारण घायलों का इलाज भी नामुमकिन हो जाता है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए हम कह सकते हैं कि परमाणु बम न केवल वर्तमान जीवन को समाप्त करता है, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य को भी अंधकार में धकेल देता है।

श्रोताओं, 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य है स्तनपान के प्रति लोगों को जागरूक करना। महिला घरेलू हो या कामकाजी, इससे संबंधित अधिकार के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है। साथ ही कार्यस्थलों में उनके लिए जगह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि शिशु और माता को आवश्यकतानुसार समय दिया

दिया जा सके। एक शिशु के लिए पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। WHO के अनुसार नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा युक्त माँ का दूध संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। सामान्यतः बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। इससे सिर्फ शिशु को ही नहीं माँ को भी फायदा होता है। दूध में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यह शिशु को कई रोगों से बचाता है। साथ ही शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, इसलिए इसे शिशु का जीवन रक्षक भी कहा जाता है।

श्रोताओं, अब कुछ खबरें अखबारों से। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर दी जेपीएससी घोटाला मामले की जांच की जानकारी। छात्रों से बातचीत के लिए सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी, हुई बैठक। सरकार के निर्देश पर प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे अधिकारी, बारिश में निकाली तिरंगा यात्रा। इस मौके पर राज्यपाल ने छात्र हित को सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कथित अनियमितता को अत्यंत गंभीर विषय बताते हुए कहा कि गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए।

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से। मतदाता सूची SIR 2026 को लेकर बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडे ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती के निर्देश पर आयोजित बैठक में निर्वाचन आयोग के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई तथा दावा एवं आपत्ति प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग की अपील की गई। एसटीओ ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है। जिन पात्र मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे फॉर्म 6 के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा पत्र जमा कर अपना नाम शामिल करा सकते हैं।

रांची से हजारीबाग जिला पुलिस को मिले 30 नए वाहन। राज्य सरकार की ओर से पुलिस मुख्यालय रांची के माध्यम से जिले को 30 नए डायल 112 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे जिले में आपातकालीन पुलिस सेवा और अपराध नियंत्रण की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

श्रोताओं, कुछ और खबरों में आज है, घरेलू गैस उपभोक्ता के लिए ई केवाईसी कराना जरूरी। इसके लिए अंतिम तिथि है 16 अगस्त 2026।

0: 703 प्रजातियां पाई जाती है, जो दुनिया की कुल प्रजातियों का 8.25% है। वित्त मंत्रालय ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए आयकर छूट को बढ़ाकर साल 2040-41 तक करने समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं। पद्मश्री से सम्मानित और त्रिपुरा, बिहार व पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल टीवाई पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पाटिल एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ शिक्षाविद भी थे। उन्होंने देश भर में 182 से अधिक शिक्षण संस्थान और 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। दो दशक बाद भारत लौटा राष्ट्रमंडल खेल ध्वज, तैयारियों ने रफ्तार पकड़ी। 20 वर्ष बाद भारत के शहर अहमदाबाद में खेला जाएगा राष्ट्रमंडल गेम्स। 2027 में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाने वाला है वनडे विश्व कप। विश्व कप के लिए गावस्कर ने चुनी टीम, रोहित शर्मा को भी दी जगह।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:59 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: रंग तरंग
2: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों से।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके, उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बो

सह न सके और उस पे दावा के तलवार हम उठाएंगे। फरेब मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है, इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है।

पर भी है तुम्हें शेखी बघारने वालों के इस जमीन पे पुतली भी एक औरत है कि जिसमें मर्द को ललकारने की हिम्मत है। पहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगर चे फूल का इकहार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है।

0: सुनो
1: ओ?
0: जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

Sani da magare sa, sani da magare sa, sani da magare sa.

साबरी ब्रदर्स और साथियों की आवाजों में ये थी कव्वाली। आइए अब सुने रानू मुखर्जी के स्वर में ये गीत। रचना है कृष्ण राघव की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल

0: कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसुला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। लता मंगेशकर के स्वर में ये है पद्मा सचदेव का लिखा गीत, संगीत जयदेव का है फिल्म प्रेम पर्वत।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया।

0: हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। उमरा जान फिल्म की गजल सुनिए तलत अजीज की आवाज में, शहर यार के बोल, खयाम का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

बेताब फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं राहुल देवबर्मन की आवाज में। गुलजार के बोल हैं, संगीत राहुल देवबर्मन का।

नाम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मनहर उदास मोहम्मद अजीज की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। ये शराबी फिल्म का गाना है।

शराबी फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज।

इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों के भावों को भी पकड़िएगा। तो अब हम इबारत पढ़ के सुना रहे हैं। वो भीगी दोपहर थी, रिमझिम फुहार पड़ रही थी। आंगन में रखी गुड़िया को देखकर अम्मा की आंखें भर आई। उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, जिसकी विदाई को कई बरस बीत चुके थे। अब इसमें एक शब्द है बरस, इस पर कौन से गाने होंगे बताइए। उसने अम्मा से विदाई के समय कहा था, मेरी गुड़िया रख तो संभाल के, मोरा नहीं खेलन का चावरे बाबुल। और अब ये गाने की लाइन मैंने लिख दी है, क्योंकि ये गाना आप कभी कभार सुनते हैं। तो क्या आपने इस गाने को कभी पहले सुना था? फिल्म का नाम जरा बताइए। और अब आगे इबारत आगे पढ़ रही हूँ। फिर उसने कहा था, अम्मा मोरे बाबा को भेजो रे के सावन आया। फिर घर सूना हो गया, कभी इसी घर में भाई बहन की हंसी गूंजती थी। छोटी छोटी बातों पर रूठना मनाना चलता रहता था। आज पूरा परिवार साथ होते हुए भी घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी बेटी का फोन आया, उसकी हंसी सुनते ही अम्मा का चेहरा खिल उठा। सावन की फुहारों के साथ जैसे घर में फिर वही पुरानी रौनक लौट आई। सबने महसूस किया कि रिश्तों में प्यार बना रहे तो हर विदाई के बाद मिलन खुशियों से भर देता है। अब यहाँ पर बताइए, रिश्ता शब्द आपके पास आ रहा है और याद आ रही है, घर है, प्यार है, विदाई है, तो हमने आपको हिंट दे दिया। मतलब यूं कि हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, बल्कि ये आपको हम हिंट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। तो आप बताइए कि कौन से वो शब्द हैं जिनसे आपको गाने सूझ रहे हैं, और कौन से वो भाव हैं जिनसे आपके भीतर जज्बात पैदा हो रहे हैं। तो वो जज्बात भी साझा करते चलिए, और साथ में हमारी पहेलियों के जवाब भी। अब भला बताइए कि कौन है ऐसा जिसने विदाई की पीड़ा को न सहा हो, तो अपने अनुभव साझा कीजिए। आपने विदाई की, आप विदा हुए कहीं अपने घर से। विदाई सिर्फ बेटी की नहीं होती, ससुराल जाते समय विदाई वो भी होती है जब आप कहीं पढ़ाई के लिए देश विदेश की यात्रा करते हैं, शहर छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, हॉस्टल में जाके रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं। वो यादें, वो बातें, तमाम बातें साझा कीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं सिलसिला, और देखिए कि क्या यही गाना आपने सोचा था कि हम पहले नंबर पर रखेंगे, यही गाना या कोई और गाना। तो चलिए आज के शब्दों को चुनिए, गानों को चुनिए और यादों को चुनिए, यादों को खंगालिए। शुरू कर रहे हैं सिलसिला परख फिल्म का गाना। बताइए हमें गीतकार और संगीतकार का नाम क्या है?

0: परख फिल्म का गाना था। गीतकार संगीतकार शैलेंद्र और सलील चौधरी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, त्वरित जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है। और एक श्रोता नहीं बल्कि अनेक श्रोता लिख रहे हैं अब के बरस भेज, मतलब बंदिनी फिल्म का गाना। तो इतने सारे श्रोताओं ने ये गाना लिखा है तो हमें लगता है वही गाना अब बजाया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्पणियां भी पढ़कर सुना दी जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दिल को छूने वाली है, पर पढ़ के मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा कि अपने बचपन की यादें बताऊं, बेटी की यादें साझा करूं। खैर, हमारा बचपन तो बहुत संघर्षमय रहा। माँ को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी खेती बाड़ी के काम से, पर जब भी कभी नागपंचमी या राखी आती तो बाबा फोन करके पूछते रहते थे। आज भी पूछते हैं, बाई तू कदी ये, मतलब तुम कब आ रही हो। और बहुत सारे श्रोता विदाई पर कुछ बातें लिख रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विदाई सिर्फ बेटी की विदाई नहीं होती है, या जो लड़कियां हैं औरतें हैं सिर्फ आपकी विदाई नहीं होती, बल्कि आप अपने बेटे को भी विदा करते हैं। आप अपनी बेटी को विदा करते हैं जब वो पढ़ने के लिए घर छोड़ते हैं, तो वो बातें भी साझा कीजिए। आप खुद हॉस्टल में रहे होंगे, वो यादें भी साझा कीजिए। और इसमें हम मिली जुली टिप्पणियां शामिल करते हैं, मिले जुले विषय को रखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय बरखा की कुछ बूंदें उन आंखों से भी छलक जाएंगी जब एक माँ अपनी बेटी की विदाई के समय को याद करते हुए उसकी यादों की गुड़िया के खिलौने को बड़े प्यार से निहार रही होगी। और एक श्रोता ने लिखा है अब के बरस तुझे धरती की रानी, मतलब बरस शब्द से इन्होंने ये गाना चुना है। तो शब्दों को पढ़ते रहिए और गाने चुनते रहिए। अब अगला गाना सुनते हैं बंदिनी फिल्म का। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने को लिखा है। अब इसके बाद बंदिनी फिल्म के गाने के बाद कौन सा वाला गाना आना चाहिए वो भी जरा
1: तो है। प्रादेशिक समाचार, नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा धांधली को लेकर सदन के बाहर एनडीए विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। जेपीएससी परीक्षा विवाद को सुलझाने के लिए सरकार के प्रयास तेज। चार मंत्रियों वाली कमेटी और आंदोलनरत छात्रों के बीच आज वार्ता संभव। जेपीएससी मामले में सीआईडी की कार्रवाई जारी। रांची और लखनऊ से 5 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां। राज्य सरकार ने सभी शहरी निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मकानों को सितंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। और रांची के सभी निजी अस्पतालों को 15 दिनों के भीतर डिजिटल हेल्थ प्रणाली लागू करने के निर्देश। आदेश का पालन न करने वाले चिकित्सा संस्थानों पर होगी कानूनी कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह, मन्नान मलिक, लक्ष्मण राम और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय सहित कई दिवंगत नेताओं और विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई। सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर असम बाढ़ पीड़ितों और शहीद जवानों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन भाजपा विधायकों ने परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विधायकों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है।
2: जांच के दायरे में सीएम हाउस तब आएगा ना, जब सीबीआई जांच हो। आपका सीआईडी के भरोसे जांच का आज सीएम हाउस तक आएगा क्या? उनके मंत्री सीएम हाउस तक जांच को ले जाएंगे क्या? इसीलिए तो

0: सीबीआई जांच की बात हम लोग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं बिना सीबीआई से कि जांच के ना छात्र ना भाजपा ना एनडीए पीछे हटने वाले हैं।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में वरिष्ठ भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में मंत्रियों का कोटा तय है और छात्रों का यह विरोध अब एक जन आंदोलन बन चुका है।
2: छात्र का ये आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, जैसे 1857 की क्रांति एक दिन में खड़ी नहीं हुई थी, उसे ही 6 साल में इस सरकार ने जो गड़बड़ियां की है, इस सरकार ने जो नौकरियों को बेचने का काम किया है, ये सिर्फ लीक की घटना नहीं है। यहाँ सरकार सीटों को कोटा माध्यम से अपने मंत्रियों में अपने लोगों में बांट देती है। सीट निकला है, इसमें 20 सीट तुम्हारा है, 100 सीट तुम्हारा है, ऐसे मंत्रियों में बांटा जाता है।
1: इस बीच झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली जेपीएससी परीक्षाओं में भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों ने नौकरियां पाई, इसलिए उन्हें नैतिकता पर बोलने का अधिकार नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और आज उनके साथ वार्ता संभावित है।
3: और ये भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट और घड़ियालू आंसू रोने का जो प्रकरण है उसके बाद शुरू हुआ है। सर पहले सीआईडी की जांच कराई, छापा डलवाया, गिरफ्तारी कराई और भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में घड़ियाली मांग के लिए आए हैं। एक संवेदनशील पहल की है, हमारा यह स्पष्ट मानना है। उन छात्रों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकार की इस पहल पर सकारात्मक जवाब दिया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद के बीच कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे जल्द से जल्द सरकार के साथ बातचीत शुरू करें।
4: सरकार की ओर से मंत्रिमंडल सदस्यों की एक टीम भी गठित की है, जो छात्रों से वार्ता वो टीम करेगी। छात्रों की बात तो टीम के द्वारा सुनी जाएगी और हमारे राज्य की जो जांच एजेंसी है वो जांच के साथ साथ कार्रवाई भी कर रही है।
1: जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में झारखंड सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। सीआईडी ने रांची और लखनऊ में छापेमारी कर 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल का अकाउंटेंट भी शामिल है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैन्सी सहाय ने सभी शहरी निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मकानों को सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 14,000 आवासों को एक महीने के भीतर रूफ लेवल तक लाने को कहा है। बैठक में 1,00,000 नए आवासों की स्वीकृति और पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण भुगतान में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। रांची के सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने जिले के सभी निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को 15 दिनों के भीतर डिजिटल हेल्थ प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। 30 अगस्त तक आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सदर अस्पताल में आयोजित कार्यशाला में मरीजों की आभा आईडी बनाकर डिजिटल रिकॉर्ड जोड़ने को अनिवार्य किया गया है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की गई है। क्लोरोफिल स्कूल के संचालक अजय अग्रवाल ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से सालाना 10 लाख लीटर पानी का संचयन किया है। नगर परिषद ने इस मॉडल की सराहना करते हुए वाटर हार्वेस्टिंग लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है।
5: ग्राउंड वाटर लेवल है वो घटते जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की निर्भरता जो है अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर लेवल पे है। तो हमारा उद्देश्य कैच द रेन के अंतर्गत है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, लोगों को उस लिए जागरूक करना, और जो बरसात के मौसम में जो हमारा पानी बह के वेस्ट हो जाता है उसको हम लोग हार्वेस्ट कर सके।
1: हजारीबाग के

0: शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय परिसर में 5 अगस्त से लगातार 10 दिनों तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशासन ने आम नागरिकों से इस मानवीय कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। बजराहा में एक गोलीकांड के नामजद आरोपी सुमित ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में सकारात्मक रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,806 पर, जबकि निफ्टी 23 अंक गिरकर 24,647 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,36,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड के कुछ संवेदनशील इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां बहुत भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और कोडरमा सहित पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी कर तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा धांधली को लेकर सदन के बाहर एनडीए विधायकों का जोरदार प्रदर्शन। जेपीएससी परीक्षा विवाद को सुलझाने के लिए सरकार के प्रयास तेज। 4 मंत्रियों वाली कमेटी और आंदोलनरत छात्रों के बीच आज वार्ता संभव। जेपीएससी मामले में सीआईडी की कार्रवाई जारी। रांची और लखनऊ से 5 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां। राज्य सरकार ने सभी शहरी निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मकानों को सितंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। और रांची के सभी निजी अस्पतालों को 15 दिनों के भीतर डिजिटल हेल्थ प्रणाली लागू करने के निर्देश। आदेश का पालन न करने वाले चिकित्सा संस्थानों पर होगी कानूनी कार्रवाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: रहता है बेटी की विदाई एक सुनापन सा एहसास देता है। बेटी के फोन पर हंसी सुनकर घर में खुशी और रौनक फिर से सबके मन में खिल उठती है। बस इन्हीं शब्दों से गाना चुनिए आप। बेटी शब्द इसमें आया है, विदाई तो है ही, रूठना मनाना है, हंसी है और फोन भी है। तो फोन शब्द से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है हम सुनवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ गाने सुझाएं। फिलहाल चोरी चोरी फिल्म का ये गाना सुनिए। रचना किसकी है आप बता सकते हैं और संगीतकार का नाम भी बताइए।

बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही भावुक गाना सुनाया। और इसके पहले जो गाना सुनवाया था, बिछड़ी मेरी सहेलियां तुम लौट आओ, इसके लिए भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहली बार सुना, ये गाना हमने कम सुना और बहुत ही भावुक कर देने वाला ये गाना था। सचमुच कई बार हम गीत सुनकर ही जज्बाती हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज मुझे 35 साल पुरानी बात याद आ गई, जब हम छत्तीसगढ़ से ट्रांसफ़र होकर आ रहे थे तो जो मकान मालकिन थी, जिसे वहाँ दाई कहते थे, वो इतना रोई और एक बेटी की तरह मुझे विदा की। रास्ते के लिए खाना भी रखा और साड़ी भी दी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सावन के गीतों को सुनने का आनंद मिलेगा। सावन के दिनों में अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, पर याद कर घर जाकर मिलने की आस भी रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब वो खुद विदा की जाती है और बेटी होगी तो उसे शादी करके विदा किया जाता है, वो मंजर बहुत भावहीना होता है। अगर बेटी या बेटा पढ़ने या नौकरी के लिए विदा होते हैं तो एक एहसास होता है लौट के फिर आएंगे। मेरी बेटी पुणे से कोंकण नौकरी के लिए गई थी, तब पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू देखे थे। सचमुच विदा किसी भी तरह का हो, विदा दुख देता है, आंखों में आंसू ला देता है। बहरहाल अब चलिए जरा बरखा की बूंदों में भीगा जाए। चिराग फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इसमें पहेली है। पहेली ये कि आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार। हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए। फिल्म चिराग। और भी कोई गाना याद आ रहा है इन शब्दों पर, इबारत वाले, वो भी आप लिखते चलिए। अगर बहुत सारी फरमाइश आ जाएगी कि इन यही गीत है जो इबारत वाले शब्द है, तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे।

चिराग फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था, हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, आशा पारिख और सुनील दत्त। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई की बात आई तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब माता पिता पढ़ाई करने या जॉब करने अपने बच्चों को स्टेशन छोड़ने जाते हैं, मम्मियों के आंसू नहीं रुकते, जिसकी मैं स्वयं साक्षी हूँ। भोपाल से हम सफर एक्सप्रेस पुणे मुंबई चलती है, उन माओं में मैं भी शामिल थी जिनके आंसू सबको जानते हुए रुक नहीं रहे थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सावन की बात है, ऐसा लगता है कि ममता जी की आंखों में भी सावन होगा। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने रुला दिया वो गाने सुनाकर, मेरे ख्याल से इस गाने की बात है, बिछड़ी मोरी सहेलियां और अम्मा मेरे बाबुल को भेजोरी, ये ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर किसकी आंखें नम नहीं होती हैं। तो इन्होंने आगे लिखा है कि आज न मम्मी है न पापा है, एक भाई है हमसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो अपने परिवार के लिए मजबूर है, इसलिए फोन पर ही बात हो जाती है, आज मन बहुत भावुक हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि परख फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया, बेहद लोकप्रिय गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना और बरखा से जुड़ा हुआ, बारिश की रस भरी फुहार, किस तरह से पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे दिलों में भी प्रेम रस का संचार करता है ये गाना, उसी का वर्णन है इस गीत में। सलिल चौधरी के शास्त्रीय लोक और पहाड़ी धुनों को मिलाकर बनाए हुए गाने इतने ज्यादा मीठे लगते हैं सुनने में कि जब भी हम इन्हें सुने

0: कितने भी तनाव में हो मन प्रसन्न हो जाता है। और इन एक श्रोता ने और लिखा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ये गाना सुनवा देंगे। कई बार उम्मीद के विपरीत गाना सुनवाने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन अब जो गाना सुनवाएंगे वो हम आपकी उम्मीद के मुताबिक ही सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। हमने पूछा था कि कौन सा गाना फ़ोन पर याद आ रहा है, टेलीफोन पर, कि जब बेटी विदा होती है, जो अम्मा है इस इबारत में कि अम्मा कहती हैं कि फ़ोन आया बेटी का और उनके सामने यादें साझा हो गई, तो फ़ोन वाले गाने हमने आपसे पूछे थे। अभी तक तो सिर्फ इसी गाने की फरमाइश आई है। फिल्म का नाम बता सकते हैं तो बताइए, जरा जल्द बताइएगा फिल्म का नाम।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।
0: किसकी है आवाज ये भी बताइए।
1: देवी से बात करना चाहता हूँ।

मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। आप बताइए अपने अनुभव कि टेलीफोन जब करते हैं तो कितनी देर बतियाते हैं और टेलीफोन से जुड़ी हुई कौन सी याद है, कोई खास बात है तो वो आप साझा कर सकते हैं। हमने पूछा था फिल्म का नाम पतंगा, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया और शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजें थी, ये भी सही बताया हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बात 1974 की होगी जब हम नौकरी की खोज में जम्मू गए थे, जहां एक मित्र मिल गया जिसने महीने भर अपने घर रखा और नौकरी न मिलने पर वो हमें छोड़ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर आया था। ट्रेन चढ़ने पर भी मैं रो रहा था और वो भी रो रहा था। कुछ वर्षों तक बातचीत पत्रों से होती रही लेकिन कुछ समय बाद उसके खत नहीं आए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब सावन की पहली फुहार पड़ती है तो उसकी विदाई का दिन याद आ जाता है। भीगी आंखों से उसे विदा किया था और मुस्कुरा कर कहा था खुश रहना। उस दिन समझ आया कि माँ बाप की दुआओं में कितना साहस छिपा होता है। बेटी चली जाती है लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी यादें हमेशा घर के आंगन में गूंजती रहती है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पुरानी यादों में ले जाकर आंखों में आंसू ले आए। आज माता पिता बहन इस दुनिया में नहीं है लेकिन यादें ताजा हो गईं। उस घर की जो जन्मभूमि रही, जहां छोटा सा परिवार हंसी खुशी सपनों के साथ रहता था। सावन माह कुछ ज्यादा ही याद आता है। ऐसा कोई सावन नहीं गुजरा जब माँ के पास नहीं गई, छुट्टियां नहीं मिलने पर भी एक ही दिन में आना जाना कर लेती थी। अब बरसों से सावन उदासी लेकर आता है, बस यादें ही शेष हैं। यादों में विदाई सबके बसा हुआ, सारे श्रोता आज विदाई की बात लिख रहे हैं और अपनी अपनी यादें खंगाल रहे हैं। जरा अब एक और गाना सुनिए इसी तरह और साझा कीजिए अपनी यादें और साथ में हमें ये भी बताइए कि किसकी है ये आवाज। हीरो हीरोइन का नाम तो आपको पता ही होगा। सजन घर ले चली, फिल्म हम आपके हैं कौन।

बहन शब्द से कोई गाना याद आया आपको? जरा बताइए। इबारत में भाई बहन है, और भाई बहन वाला गाना याद आए तो जरूर बताइए।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बूझा, शारदा सिन्हा की ये आवाज थी और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। हालांकि इसमें हीरो हीरोइन होते माधुरी दीक्षित, सलमान खान के भी बताया है श्रोताओं ने। और विदाई से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत ही भावुक कर देने वाला है, अभी मेरी बिटिया की विदाई का समय तो दूर है पर आज ही अपनी विदाई का वक्त याद कर आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। और इन्होंने बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए ये गाना भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत, आज की इबारत हर बेटी के मन में बसे सावन की साझा स्मृति है। सावन केवल पेड़ों पर नहीं उतरता, वो यादों की शाखों पर भी झूलता है। भीगी दोपहर, आंगन में रखी गुड़िया और अम्मा की नम आंखें मिलकर उस रिक्तता को स्वर देती हैं जिसे हर बेटी की विदाई घर की चौखट पर छोड़ जाती है। वो गुड़िया महज एक खिलौना नहीं, बचपन की आखिरी अमानत है। और सावन आया केवल ऋतु का संदेश नहीं बल्कि उस बेटी की मौन पुकार है जो मायके की दहलीज, अम्मा की गोद और बाबुल के स्नेह को एक बार फिर जी लेना चाहती है। पर माँ का मन वहीं ठहरा रहता है जहाँ विदा होती बेटी ने आखिरी बार मुड़कर देखा था। चलिए, अब हमने आपसे पूछा था भाई बहन वाला कौन सा गाना आपको याद आया, तो कहीं ये गाना तो नहीं है? सुनिए और बताइए फिल्म का नाम।
1: मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
0: हीरो हीरोइन का नाम भी आपको पूछना है।

इस गाने को सुनते हुए बहुत सारे श्रोताओं को भाई बहन वाले गाने याद आए और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है किसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो भाई बहन वाले गाने बहुत याद आते हैं। और शारदा सिन्हा के लिए लिखा है कि शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला कही जाती थी। और एक श्रोता ने और लिखा है भाई बहन का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का गीत, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, फूलों का तारों का सबका कहना है और बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद वो सावन भी आए जो बहन सा रंग ना लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुंच ना पाए, ये कविता की पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन पर फिल्म छोटी बहन का गाना याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। और गाने सुनते जा रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है गाने सुनते जा रहे हैं, आंखें साफ हो रही हैं, भावुक हो रहे हैं, बस यही चल रहा है आज के प्रोग्राम के साथ। और एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मुमताज इस फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं। और टेलीफोन से जुड़ी हुई हमने बात पूछी थी कि टेलीफोन वाला जो गाना सुनवाए तो आप अपनी यादें साझा कीजिए। तो श्रोताओं ने लिखा है कि अगर फोन पर पिता पुत्र बात कर रहे हैं तो केवल कुछ मिनट मतलब की बात होती है, अगर माँ बेटी की बातें हों तो समय असीमित होता है, यूं समझ लीजिए घंटों घंटों कुछ मिनट के समान होते हैं। एक श्रोता ने बिल्कुल सही बात है कि जब माँ बेटी बतियाने लगती हैं तो भूल जाती हैं कि हम टेलीफोन पर बतिया रहे हैं। लेकिन आजकल जो दो दोस्त बात करते हैं तो वो भी अनलिमिटेड बातें होती हैं, पता नहीं चलता समय का। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आठवीं कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा था अपने बड़े बेटे को, तो पति पत्नी दोनों को कई दिनों तक याद आती थी, सभी समझते थे कि पढ़ाई करने गया है, लेकिन परिवार से अलग होने का बिछोह ज्यादा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने 2002 में लैंडलाइन फोन के लिए आवेदन किया था, बहुत इंतजार के बाद हमें फोन मिला था। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं अनाउंसर बनी थी, इलाहाबाद से रीवा जा रही थी, 3 जुलाई 1987 को सुबह 6 बजे की बस पर बैठी थी और 9:30 पर रीवा पहुंची थी। बस की खिड़की के बाहर मुंह करके बैठी रही, पानी बरसता रहा और घर छोड़कर मैं रोती रही कि कहीं हमारे पापा हमारी रोती हुई शक्ल ना देख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जरा रूठने मनाने की बात भी इबारत में हुई थी, तो ये गाना सुनिए और बताइए कौन है हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी बूझिए। फिल्म का नाम सीमा।

सीमा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने पूछा था कौन है कलाकार, सभी श्रोताओं ने बताया नूतन। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां हम शामिल कर दें उससे पहले जो अब हम गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में एक सवाल पूछ लें। दाता फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, उसमें आपको पूछना है कौन है इस फिल्म में कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। और आपको बता दें एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया ये अमर रहेगा, क्योंकि जैसा किशोर दा ने गाया है ऐसा कोई गा नहीं सकता, उन्होंने जो भाव से गाया है वो भाव अमर है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई शादी के बाद तो विदाई होती है, विदाई भाई बहन से, बिछड़ने का वो बचपन जहां हम मिलकर खेले झगड़े किए फिर मिल गए, जब जब मायके जाती हूँ तो आते समय आंखें अपने आप भर आती हैं, सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख आज भी हमें सताता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी जब अपने ससुराल से पीहर मेरे घर आती है और कुछ दिन रहने के बाद जब उसे वापस ससुराल जाना होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि घर पूरा सूना हो गया है। चलिए सुनते हैं ये गाना।

दाता फिल्म का ये गाना सुनते हुए बहुत सारे श्रोता फिर भावुक हो गए और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगी। एक श्रोता ने अभी भी लिखा कि मैंने अपनी विदाई की बातें तो बताई ही नहीं, मेरी विदाई पर सारे घर वाले हम लोगों को ट्रेन पर छोड़ने आए थे, ट्रेन चल रही थी और वो लोग भी रोते रोते चलते रहे, आज कोई भी न छोड़ने वाले हैं न रोने वाला है। अब दरअसल व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं लोगों के घरों में कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक कोई जाता है परिवार से और 10 लोग परिवार के छोड़ने आते हैं। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफ़र हो रहा है ख़त्म। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुस्कुराहट पर। मुस्कुराहट चेहरे का केवल एक भाव नहीं बल्कि मन की सुंदर भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी उदास मन में आशा का दीप जला सकती है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अपनापन जोड़ सकती है। मुस्कुराहट वो फूल है जो बिना मौसम के भी खिलता है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व में भी आकर्षण भर देती है। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करता है। कभी कभी किसी की एक सच्ची मुस्कान थके हुए मन को सुकून दे जाती है। ये रिश्तों में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और वातावरण को सकारात्मक बना देती है। मुस्कुराने के लिए किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं होती, कई बार छोटी छोटी खुशियां भी होठों पर मुस्कान ले आती है। किसी

मुस्कुराहट ईश्वर का दिया हुआ ऐसा उपहार है जिसे बांटने से कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। ये जीवन की राहों में आशा, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। मुस्कुराहट वो खामोश कविता है जिसे चेहरा लिखता है और दिल पढ़ लेता है। कहते हैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजार शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। किसी परेशान व्यक्ति को दी गई छोटी सी मुस्कान उसके मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये वो अनमोल उपहार है जिसे देने में कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मुस्कुराहट जीवन की कठिन राहों में एक सहारे की तरह होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।

मुस्कुराहट रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाती है। घर में माता पिता की मुस्कान बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती है। दोस्तों की मुस्कान मित्रता को गहरा बनाती है और किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी पल भर में एक सकारात्मक संबंध बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे में मुस्कुराहट मन को शांति देने वाली औषधि के समान है। ये वातावरण को हल्का बनाती है और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहट केवल खुशी के समय की पहचान नहीं है, बल्कि ये संघर्षों के बीच भी उम्मीद बनाए रखने की ऐसी शक्ति है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही मुस्कुराता हुआ इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे की सुंदरता से अधिक हृदय की सुंदरता को दर्शाती है। मुस्कुराहट वो दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है। इसे बांटते जाइए, क्योंकि यही जीवन को सरल, सुंदर और मधुर बनाती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए

0: कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
3: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together

0: a strong maritime India and a विकसित भारत, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम देश के लिए जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे. That should be the commitment.
1: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है. संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा.
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा.
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई. बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की. जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है. हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं.
3: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं. हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं. फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है. याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी. से इश्फाक शाह.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है. इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं. उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है. भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है. वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है.
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं. कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है. राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
5: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है. बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है. और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है.
4: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून.
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है. हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं.
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है. अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं. पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है. इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है. कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है. हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है. प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर.
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा. उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों

0: आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह।
2: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। आइए अब सुनते हैं माय लव फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: साज और आवाज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कुमार बाराबंकी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: परवाना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हमराही फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं विश्वास फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में, गुलशन बाबरा के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी अनियमितता प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से झारखंड में नौकरियों को बेचा गया है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच होनी चाहिए और परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल के क्रियाकलाप की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
1: लगातार भूख हड़ताल की संख्या बढ़ती जा रही है और हालत भी उनके बिगड़ रहे हैं, सेहत पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो मांग है छात्रों की, उन मांगों पर सरकार को संवाद करनी चाहिए। अगर मांगे पूर्ण नहीं हुई तो पहले 9 तारीख को मेरा एक दिवसीय आमरण अनशन होगा, क्योंकि यही विधानसभा को इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो सेशन समाप्त होने के बाद हम छात्रों के बीच अपना भूख हड़ताल करेंगे।
0: इधर जेपीएससी प्रकरण पर मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा है। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और संजय यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इस समस्या का हल वार्ता के माध्यम से करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को यह तय करना है कि कब और कहां सरकार से वार्ता करनी है। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामला और जेपीएससी का मामला पूरी तरह से अलग है, इन दोनों मामलों को एक नजरिए से देखना गलत है। राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जेपीएससी अनियमितता प्रकरण में आज सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हो सकती है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधानसभा में कहा कि सीबीआई जांच से जुड़े पहलू पर सरकार विचार करेगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी कहा कि छात्रों से वार्ता के बाद ही सीबीआई जांच का निर्णय सरकार लेगी।
2: जो जांच से बातें बाहर आ रही हैं, वो पेपर लीक का मामला नहीं, जो एजेंसी है उसके द्वारा मैनिपुलेशन उसमें नजर आ रहा है। जांच पूरी हो जाने दीजिए, जिस प्रकार से उस जांच का नतीजा निकल करके आता है उसमें निर्णय लिया जाएगा। इसको इवैल्यूएट करिए सरकार, अभी जरा बच्चों से बात हो जाए कि वो किस तरीके से चीजें चाहते हैं।
0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद के बीच कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से

मुलाकात कर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे जल्द से जल्द सरकार के साथ बातचीत शुरू करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले में गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वालों से राशि की वसूली की जा रही है। जिले के रानेश्वर प्रखंड में सरकारी नौकरी करने वाले की पत्नी तथा गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाले 4 लाभुकों से प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने 2,12,240 रूपये वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। बीडीओ कार्यालय के माध्यम से राशि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दुमका में जमा की जाएगी। गुमला जिला स्थित पालकोट प्रखंड मुख्यालय में पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान तकरीबन 82 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 80,000 नकद और 2 पहिया 4 वाहन जब्त किए हैं। इस संबंध में पालकोट थाना प्रभारी विश्वजीत चेतन ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर उड़ीसा से गांजा खरीद कर बिहार ले जा रहे थे। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। बजराहा में एक गोलीकांड के नामजद आरोपी सुमित ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भारतीय महिला हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। मुख्य कोच टिम व्हाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट गई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती भी तुम्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और आरती बताओ कैसी हो, कैसा लग रहा है आज का दिन तुम्हें, कैसा लग रहा है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में जब धूप खिल जाती है ना तो मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है।
1: और खिली धूप में जब बारिश के भीगे हुए पत्ते होते हैं ना तो बिल्कुल चमकदार लगते हैं, धूले साफ लगते हैं, तो मन बड़ा वैसे भी आनंदित हो जाता है। और बारिश लगातार होती है तो लगता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई धूप थोड़ी निकले, क्योंकि कपड़े वपड़े सूखे, जो सीलन है वो सब गायब हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखो आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, विषय बता देते हैं पहले कि उपयोगी टिप्स में हम बात करने वाले हैं बारिश में घर की सफाई।
2: तो आप लोग किस तरीके से बारिश में अपने घर की सफाई करते हैं या क्या आप उपाय अपनाते हैं अपने घर को साफ रखने के, और जो थोड़ी सी सीलन वाली एक महक सी आ जाती है उसको दूर करने का आप क्या उपाय करते हैं, तो आप हमें लिखकर भेजिए।
1: और देखो बहुत सारे हमारे साथियों ने संदेश भी

0: तो आप आपके पास जो भी इनके बारे में जानकारी है आप हमें लिखकर भेजिए, और आप किस तरह से इनसे जुड़े हुए हैं अगर ऐसा भी कुछ है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
1: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं हम लोग गीत, फिर आगे करेंगे बातें।
0: बिल्कुल।

0: अदाओं के साथ फिरते कदम
1: चलते रे इश्क भी पड़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में
2: दबंग, दबंग, दबंग, दबंग।
0: और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओके टिको केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
5: निकला ओ गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
6: हाँ तो मंजरी, अब हम बात करते हैं अपने जो नया सेगमेंट जो हम ये लेते हैं कहानी पद्मश्री की। तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक कैल देव की अम्मा जो कि पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देव की अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे। उनका देव की अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देव की अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
7: और देव की अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
6: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देव की अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
7: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
6: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज की शुरुआत करी है ना कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
7: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंक मड़ी जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं 4 पीढ़ियों ने मेरी माँ के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे और वो कहती हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्योहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देव की अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते लेकिन अधिक से 3000 से भी अधिक वृक्ष वहां पर हैं।
6: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देव की अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने

0: उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
1: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
0: बिल्कुल, उनका कहना है हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
1: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
0: बिल्कुल, और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी ठेंकमणि कहती हैं 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
1: और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भूमित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है।
0: और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत
0: और ये
1: हो सके।
0: देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी दूर से तो प्यार की बंध जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बंध जाते हैं, क्योंकि प्यार चीज ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहाँ पर पेड़ पौधों से प्यार होता है तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है, और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है,
0: बिल्कुल
1: है
0: ना। और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है, कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल,
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे,
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है, और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं, और इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्ट चित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने। और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टाचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
0: बिल्कुल, ये पर्यावरण को देखो, जो परंपरागत हमारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं, और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
1: और इसके साथ ही सुजनी जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ती मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल, इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है, और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है, जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी, कठपुतली

0: माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
1: बिल्कुल, और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की यात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है, जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
1: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं। लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आर्थिक कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
0: तो बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आए जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो कला है, सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं, जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं, तो इनको इनको सहेजना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम गीतों को भी सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, इतना प्यारा सा गीत हम लोग ने सुना, और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा हैं, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल है।
0: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश हम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, लेख हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने, और चिट्ठियों की इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं सीखो, फिर हम कलाओं की बात करेंगे। तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाके जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रखकर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और देखो,
1: तो हमारे प्यारा सा था ना, रुका ही नहीं गया।
0: देखो हमारे साथी लिखते हैं, आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं, और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी है, और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमें जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है, जैसे कि लोक संगीत का, ये बहुत ही सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीजों की वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं, जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से।
0: बिल्कुल, और लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब

0: उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएं लुप्त प्राय ही हैं और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्णन कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है। और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना, ये हमारे देश की पहचान है, इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुनें।

0: जब
1: तुम मेरे सामने आए, लेकिन
0: जब जब ये चिट्ठियों के संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल उन पे संयम रहता ही नहीं है।
1: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है, है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके बारे में?
0: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थी, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
1: क्या बात है। और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आती। और हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहां, चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छिन गया है। और वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना, उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता, आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था, डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकिया लेकर आता था। कागज का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था, चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था, संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है,
0: बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है, मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं आती कि चिट्ठियां या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देख कर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है, मेरे बड़े भाई बड़े बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब मैं बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं तो मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया करता था, महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था, कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इतर भी डाल दिया करता
0: था। चिट्ठी जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह क्या बात है। और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था, और

0: उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हाल चाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी। एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था। उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं।
1: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही नहीं पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्योहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाके की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते फिर सबको सुनाते। एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे, क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था। लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दे।
0: बिल्कुल। अब एक साथी जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, चिट्ठियां होती थी, है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी, पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिल लोगी जाके।
1: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना।
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं, तो एक हमारे साथी लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है, और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोज पत्र और ताड़ पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज कलम स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार भाव भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है, और साथ ही साथ अपनी प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श का व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजो ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट और इन सब चीजों में कहां मिलती हैं।
2: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता थी, उसमें घोप कर सुरक्षित जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्टकार्ड, अंतर्देशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे।
3: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थी, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थी। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी, क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
2: चलो एक गीत सुन।

0: आरती, बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में कैसे रखें सफाई, तो इसके लिए देखो घर के जो पावदान है उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहन जाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहां पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: और एक साथी है जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी, सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें, पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये सब चीजें करें
0: बिल्कुल, और जो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है तो जहां भी आप देखें तो वहां पर आप उस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं जिससे कि कीटाणु नहीं आएंगे, और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई करते रहे जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है धूल गर्दा जमा हो जाती, तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो प्रोग्राम बातें करते करते समापन की ओर हो गया है, तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: बचपन में
1: अभी
0: हमने
1: तो
0: देखा
1: क्या।
0: कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में। कहते थे भी बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे उसको बैलगाड़ी बोलते थे, ये फेमस है। और अभी तो क्या कहते हैं, सावन का महीना चल रहा है तो अभी भोलेनाथ की बरेली से भी जाना जाता है, हमारा नाथ नगरी बरेली।
0: अच्छा, तो आपके बरेली में क्या हो रहा है इन दिनों, बताइए श्रावण मास में खास तौर से।
1: हम यही बताना चाहेंगे कि सोमवार को खैर बड़े भक्तों से जल चढ़ाते हैं कचला घाट से लाके भोले शंकर जी को, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, गर्मी हो रही है।
1: हाँ,
0: लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के ऊपर वो तो भक्त आ ही रहे हैं, और श्रावण मास में जो पूजा की जाती है वो तो कर ही रहे हैं ना मंदिरों में आके।
1: हाँ मैम जी, ये तो बात ठीक है, मंदिर में बड़ी प्रेम श्रद्धा से पूजा करते हैं। इतनी दूर लाइन लगती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है। जब तीसरा और जब चौथा सोमवार आता है सावन का, तो बहुत लंबी कतार लग जाती है मैम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही श्रावण मास की खासियत भी है।
1: और भी जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे बरेली का सुरमा भी मशहूर है।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: जो आंखों में लगाते ही आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है,
0: आंखें कजरारी दिखने लग जाती हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा, तो बताइए आपको
1: हाँ
0: कौन सा
1: जी।
0: गीत
1: और
0: सुनवाएं।
1: गाना रहेगा आई मिलन की रात का, सावन वाला आया है घटा से बरसा है पानी।
0: अरे वाह, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी हम तो आपकी आवाज फट से ही पहचानते हैं।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी डार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए हम भी आपकी आवाज पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल, जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामयिन के साथ, और जो लिसनर है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा। ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है।
0: जी
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार है आपके, और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए, अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर में कैसा मौसम चल रहा है, और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा, चाहे वो यहाँ का डल लेक हो या यहाँ की जहलिम हो, यहाँ का लेदर वैली हो, तो उनमें बहुत पानी आया था, तो फिर ऊपर वाले की

0: जबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
1: बहुत गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है, और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए तो और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं, अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा,
0: हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाली नस्ल है हमें उनके लिए, ये जो हम क्लाइमेट है हमें उनके लिए ये बचा के रखना है।
1: बहुत अच्छे विचार आपके। और अब सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: जी, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, मैं ना बोलूंगा मैं ना बोलूंगी।
1: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सिक्किम गैंगटॉक से अर्जुन तदन बात कर रहा हूँ मैडम।
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए, अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा हॉबी है। बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सखी सहेली है ना, दिन में आता है गीत माला नाचने वो छाया गीत।
0: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर? लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा।
1: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब आकाशवाणी मनाते है और आदमी का चारों तरफ लेता है ना। सावन महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
0: जी।
1: ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, हजारा सावन बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर के आवाज में सिंदूर फिल्म।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटा छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: रात तो हो रही थी बरसात।
0: अच्छा,
1: खूब बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर तो।
0: हाँ,
1: हम तो खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?
1: अपने तो मक्का और सोयाबीन है।
0: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
1: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
0: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
1: जी बढ़िया होने वाली है, बार किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बार।
0: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
1: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
0: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात को।
1: हाँ, बहुत
0: पानी
1: सुंदर
0: को
1: लग रहा है, अभी मैं मक्का खेत में स्कोल किया मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
1: हाँ दीदी, मोबाइल पर सुनता हूँ मैं तो।
0: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे भरे खेत की और उन्हें कहीं भेजते हैं आप कि देखिए ऐसी हरियाली है?
1: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास, कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
0: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
1: हाँ, उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है, हमारे रेडियो से दोस्त जुड़ रहे, जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
0: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है?
1: जी जी,
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाए
1: दीदी? आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है, तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
0: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का, इंदौर से।
0: स्वागत है आपका, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पर थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहली बात मेरे को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते, ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा, कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें, अगर याद है तो।
1: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस।
2: इस श्याने कर्म का क्या कहना, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने पे मैं बहुत अच्छे अच्छे गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना।
1: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का।

श्रोता सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है फिल्म 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 होने गए। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं,

0: जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह जी उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ceiet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी। और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: मे आई कम इन मिस्टर हेनरी?
2: यस श्योर, अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन

0: वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
0: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
2: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
3: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
4: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
3: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
5: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
5: जी जी चलो चलो देखते हैं।
4: चलो चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो।
6: अहोम के महाराज की जय हो।
7: जय हो जय हो।
6: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
8: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: ही सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओ,
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन

0: से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
1: अरे वाह सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
1: ओह,
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
1: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
1: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
2: जी।
1: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
1: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं

0: अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन सबको देख के। अरे यहाँ तो भवरा भी है। अरे तोता खाया जा रहा है, कितना प्यारा।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है,
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई? अरे नमस्ते दीदी।
1: अरे भैया।
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे,
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे, जीते रहो। शाबाश
2: बेटा, मामा जी आए हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी, एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है। देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। नो नो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी, आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी,

0: पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
1: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
1: दिखाया था
0: तो फिर?
1: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा, देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
2: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
3: आंटी आंटी नमस्ते।
4: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: खुशी खुशी, देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मम्मा?
4: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
2: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
2: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
2: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज
2: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
2: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है। तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं। फूल फूल फिर से, वाह। तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
4: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ। हम अरे वहाँ देखो चिड़िया तोते, अरे सुंदर है।
4: अरे सुन तो,
6: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
4: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
1: एक बार देखे तुमने?
4: हाँ।
1: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, वो बहुत खुश रहती है।
4: सही कहते हो आप।
1: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
7: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
9: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में कथित अनियमितता मामलों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी अनियमितता प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इस परीक्षा विवाद के बीच कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। जेपीएससी प्रकरण पर छात्र आंदोलनकारियों के समक्ष मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और संजय यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस समस्या का हल वार्ता के माध्यम से करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को यह तय करना है कि कब और कहां सरकार से वार्ता करनी है। जेपीएससी अनियमितता प्रकरण में आज सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हो सकती है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधानसभा में कहा कि सीबीआई जांच से जुड़े पहलू पर सरकार विचार करेगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी कहा कि छात्रों से वार्ता के बाद ही सीबीआई जांच का निर्णय सरकार लेगी। दुमका जिले में गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वालों से राशि की वसूली की जा रही है। जिले के रानेश्वर प्रखंड में सरकारी नौकरी करने वाले की पत्नी तथा गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाले 4 लाभुकों से प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने 2,12,240 रूपये वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। इवनिंग मेलोडी के इस सफर में अशोक का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा पहला गाना।

0: धर्मात्मा जी श्रोतो, इस फिल्म के गीत आप सुन रहे थे मुकेश और कंचन की आवाजों में। कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

झील के उस पार। जी हाँ श्रोताओ, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज थी। कार्यक्रम का अगला गीत प्रेम कहानी से, आवाज लता मंगेशकर की।

श्रोताओ, लता मंगेशकर के गाए इंतकाम फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का इवनिंग मेलोडी का सफर खत्म होता है।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं 5:30 हो चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है कृषकों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के, ग्रामीण भाई बहन के उमेश के दाने से जोहार प्रणाम। और आज देखा कार्यक्रम में बड़े दिन बाद हम आए ही हो और देखा कि हम आशा कर रही है कि सभी तोहरीन सब ठीके होबा और भाई अपन अपन खेत क्यारी में लगल होबा। अभी देखा कि धान के जे रोपाई चले थो हम इनके किसान भाई बहन अपन बिहन के कबारे थथिन धान रोपनी चले थे। आ दूसर दिन देखबा कि जे है हम इनके किसान भाई बहन अथी से भाई खेत क्यारी में लगल हथिन अपन आयर क्यार बांधे थथिन रोपा लगे थथी। और देखा कि बारिश जे हो रहा हम इनके पानी गिरे थे ओकरो में हम इनके किसान भाई बहन जे अथी से ये मौसम के जे है बढ़िया फायदा उठावे थथिन और धान रोपनी करे थथिन भाई। और देखा कि कहल चाहबे कि जहाँ किसान भाई बहन के बारिश न हुए थन पानी न खो गिरे तो देखा कि तोहर बिहन अगर तैयार है तो ओकरा में जो है हम इनके कुबेर न करना है, हम इनके धान रोपाई कर देना है जहाँ पानी के साधन हो पानी पटा के। और देखा कि कहे कि अगर तोहर बिहन पिछवा जितो भाई तो देखबा कि किसान भाई बहन जे से भाई हाइब्रिड धान लगो थीन और हाइब्रिड धान देखा कि महंगा हुआ है में पूंजी भी लगो है बड़ी मनी। और अगर तोहर धान पिछवा जितो रोपाई करे ले तो देखबा कि जो है धान जब फसल लगे लगतो जखन धान जो है से तोहरा मुआर लेवे लगतो चाहे धान जो है से पके लगो है तखन पिछवा जा है। तो एक खातिर हम इनके जो है समय पर रोपाई कर देना है ताकि जो है से तोहर धान बेस तरह से जो है बढ़वार हो सके और ओकर फसल जो है से बढ़िया से हो सको है। दूसर बात है देखा किसान भाई बहन हम कहल चाहबो कि देखा अगर मौसम खराब हो रहा हो भाई और बारिश हो रहा हो अगर पानी गिरे थो तो देखा तो अगर खेत में हाथ तो कोई सुरक्षित जगह में चल जा भाई। कहे कि देखा कि अबधर का है कि भाई वज्रपात के जो है बड़ी शिकायत मिल रहा है जने देखा तने देखबा कि अखबार में चाहे हमारे कार्यक्रम में जो है से समाचार में सुने मिलो है कि जो है किसान भाई बहन जो है जैसे खेत में काम करे चलतीन और दुर्घटना हो गए। तो देखा कि हम कहल चाहबो कि ये सब छोट छोट बात के ना हम इनके अनदेखा करे के चाहिए। कहे कि देखा कि जब बिजली कड़को है चाहे मौसम खराब हो लो तो हम इनके जो है सुरक्षित स्थान में चल जा और ये ध्यान रखे के चाहिए कि देखा गाछ वृक्ष के नीचे हम इनके न बचे के चाहिए। कहे कि जो है तो अगर वहाँ गेला तो तोहरा जो है से भारी नुकसान हो सको है और देखा कि एकर से कहे कि भाई जान माल के भी खतरा हो जाए तो एकर से हम इन जो है से बच के रहिए। और देखा एकर उपाय भी है भाई देखा अगर तोहरा बिजली कड़के थो गरजे मलके थो तो भाई दोनों चुकू मुकू बैठ के और जो है से कान दोनों हाथ में कान से झांप के और बैठ जा ताकि जो है तोहरा जो है बिजली कड़के के जो है ओकर चपेट में न आवे पा रहा। देखा कि अगर आज के एक घटना पता चल रही है भाई कि देखा कि एक गांव में जो है कंचनपुर गांव में पति पत्नी दोनों के जो है से घटना में चपेट में आ गए थे वज्रपात से। तो देखा कहीं ना कहीं हमारे कहे के मतलब हो कि भाई देखा हम इनके सावधान रहना है खेती बाड़ी भी करना है और जो है मौसम जब खराब हो रहा हो तो हम इन जो है से अपन

काम धाम के जो है बंद करके और अपन घरे आ जा, ताकि जो है से हमें के नुकसान नहीं होवे, भारी नुकसान नहीं होवे भाई। तो एकर में का है कि भाई देखा हम इनके सावधान रहना है। दूसर बात हो देखबा कि हम कह चाहबा कि किसान भाई बहन अभी खेती बाड़ी करे थथिन और जे लगल हा, तो देखा हम इनके फसल के बढ़वार खातिर है ओकर में हम इनके का पोषक तत्व के भी जो है जरूरी है भाई, ताकि जो है हम इनके पोषक तत्व खातिर ले सबसे पहले कोई भी चीज तू रोपो हा तो ओकर पहले जो हम इन गोबर खाद जो है से गोबर छींटे के चाहिए। आ तू अगर गोबर छींट दिला ओकर बाद जो है से अगर तोहरा वर्मी कंपोस्ट खाद मिलो है, केंचुआ खाद मिलो है, तो ओकरा से जो है हम इनके जो भी फसल लगवो है भाई तो ओकर जो वृद्धि हुआ है बढ़वार हुआ है वो जो है बेस्ट तरीके से होते। दूसर बात है कि हम इनके जो है से व्यवस्था भी करना है। तो देखा हम इनके जो पोषक तत्व हम इनको हो ये भाई ई जो है से 17 प्रकार के जो है से आवश्यक पोषक तत्व हुए है जेकरा हम इनके खेती क्यारी में जो है जरूरत पड़ो है भाई, और हम इनके तब जो है से फसल थोड़ा बेस्ट तरीके से हो। तो और देखा कि एकर में का है कि भाई हम इन कह सको ये कि देखा अगर मुख्य रूप से जो है पोषक तत्व हो नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन जो हो से हम इनके पौधा में हरापन लाओ है, और जो है जो पौधा जो हम इनके लगवो है ओकर तना हो गलो पत्ते हो गलो इस समय जो है से बढ़वार हुआ है। दूसरा है फास्फोरस, फास्फोरस हो कि भाई देखा हम इनके जो भी फसल लगवो है ओकर जड़ में जो है से ओकरा विकास करो है, और ओकर बाद देखवा कि फूल जो है लगो हो बीज बनवे में जो है मदद करो है। इस तरीके से देखा कि हम इनके जो पोषक तत्व हथिन पोटेशियम है कि हम इनके पौधा में जो है रोग से बचाओ है, और देखवा कि एकरा जो फल हुआ है ओकर में जो है सुधार करो है। तो कहीं ना कहीं देखवा ने कि हम इनके जो भी जो पोषक तत्व है जेकरा हम इनको हो ये तो वो जो है से काफी जरूरी है। हम इनके माटी में अगर बीमार ना हो, अगर ओकरा उर्वरक बढ़िया तरीके से बना के रख लीजिए तो हम इनके जे फसल लगवो ये हमीन तो ओकर में जो है से ये पोषक के रूप में काम करो है। और आगे हम बात करो ये कि कैल्शियम, देखा कि कैल्शियम भी जो हो से हम इनके जो भी फसल लगवा है ओकरा कोशिका भित्ति को ही ओकरा मजबूत बनाओ है। और मैग्नीशियम हो गलो कि प्रकाश संश्लेषण हो गलो क्लोरोफिल के निर्माण करे खातिर बहुत जरूरी हो जाए भाई। और दूसरा हो गलो सल्फर, देखा कि तेल वाला फसल हो गलो, जैसे तेल वाला फसल में हो गलो कि भाई हम इनको हो ये कि जो है जैसे सरसों हो गलो तो राय हो गल तो इस सब में का है कि भाई देखा कि वो काम आऊ है। दूसर बात हो कि देखा जिंक हो गलो एंजाइम हार्मोन्स हो गल ओकरा जो है बढ़वार खातिर जो है ओकरा बनाओ है। लोहा हो गलो क्लोरोफिल जो है ओकरा बनवे में मदद करो है। तो कहीं ना कहीं देखा कि जो है अगर हम इन ब्रोन के बात करिए तो ये फूल के जो है आगे बढ़वे खातिर चाहे फल के बनवे खातिर जो है मदद करो है। तो इस तरह से का है कि भाई देखा हम इनके कहीं ना कहीं जो है जो पोषक तत्व के जरूरी है हम इनके फसल खातिर ले तो ओकर में का है कि वह इस तरह से हम इन अपन जो है अगर ध्यान दिए जो हम इनके माटी में जो जरूरी है भाई ओकरा कमी कैसे हम इन पूरा करिए। तो देखा फसल लगवे के पहले सबसे पहले हम इनके माटी के जांच करावे के चाहिए, ताकि जो है से हम इनके ये पता चल सके कि हम इनके माटी में कौन कौन जो है पोषक तत्व के कमी है। तबे तोहरा पता चलतो कि भाई जिंक के कमी है कि लोहा के कमी है कि ब्रोन के कमी है, तबे जो है हम इन बेस्ट तरीके से अपन फसल में जो है से काम कर सको ये। तो हम इन जो है भाई कार्यक्रम में बनल ही है, और हम कह चाहबो कि भाई हम इनके ये सब जो है जैसे मैग्नीज हो गलो, तांबा हो गल, मोटीब्लेडेनम हो गल, क्लोरीन हो गल, ये सब देखा कि हम इनके माटी के जो पोषक तत्व है ओकरा जो है बरकरार रखे खातिर हम इनके अपन माटी के जांच करावे पड़तो, और बेस्ट तरीके से जो है हम इनके जे माटी जांच करावे के बाद जो हम इनके रिपोर्ट आओ है ओकर बाद हम इनके ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो। तो देखा कि कार्यक्रम में बनल ही है और भी बातचीत करबे तो कहे ना आवा सुनो ये कुछ जरूरी संदेश।

जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

देखा भाई, अब जरूरी संदेश के बाद अब कार्यक्रम में फिर से आओ ही और बात करबे कि देखा हम इनके जो है अभी जो मौसम में जो बदलाव हो रहा तो देखा कि मौसम में बदलाव हो रहा है और इस समय के जो है जरूरी है कि भाई हम इनके आधुनिक कृषि जो है कैसे करल जा सको है। अरे देखबा कि हम इनके जो पारंपरिक खेती करो लिए भाई ओकर में जो है हम इनके खेती बाड़ी में कम पूंजी लगो ले और कम मेहनत भी लगो ले और देखा कि बेस फसल भी हो ले। लेकिन अभी देखबा कि जो है हम इनके जो समय में बदलाव हो रहा अब पारंपरिक खेती से जो है दिनों दिन जो है किसान भाई बहन अब आधुनिक खेती में आवेत हथिन और ये कृषि के अपनावे खातिर ले सबसे बड़ा मांग हो कि भाई देखा हम इनके जलवायु परिवर्तन हो जाए ओकर बाद उपजाऊ शक्ति घट रहा हो पानी के कमी हो जा रहा है कभी कभी देखबा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है हम इनके खान पान जो है अन्न के भी जो है जरूरी है खाद सुरक्षा जो हो ओकरा भी जो है हम इनके बनाना है उन्नत बीज हो गलो हम इनके जो है तरीका में बदलाव करना है और एक बात देखबा पहले हम इनके जो है ट्रैक्टर ड्रोन मशीन ना हलो वैज्ञानिक तरीका के भी जो हम इनके उपयोग ना करो लिए। लेकिन अब काहे की भाई देखा आधुनिक कृषि के जरूरत हम इनके पड़ गलो है काहे कि देखा जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रहा है दिनों दिन देखबा कि जो है रोजगार के जो है जरूरी पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके उत्पादकता में जो है वृद्धि करे पड़ते और ओकरा खातिर आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाला जो हम इनके बीज है वो जो है प्रति एकड़ में हम इनके पैदावार बढ़ा सको है और एकर से कहो तो भाई एकर खातिर हम इनके जो है पानी के बचवे पड़तो और पानी के बचवे खातिर भाई देखा ड्रिप इरीगेशन हो गए स्प्रिंकलर जैसन हो गए सिंचाई प्रणाली तो ये सब का है ना कि ई विधि से अगर हम इन खेती बाड़ी करिए तो हम इन पानी के बचा सको है। दूसर बात हो गलो कि देखा कम समय में और कम मेहनत में भी हम इनके जो है से फसल चाहिए। अब देखा कि अगर कम समय हो कम मेहनत है तो एक खातिर हम इनके ट्रैक्टर हो गलो हार्वेस्टर हो गलो ये सब जो है आधुनिक यंत्र जो है वो समय जो है हम इनके बचाओ है और कम समय में जो है पूरा कर दो है तो इस सब से हम इनके जो है अपन काम करना है ताकि जो है से हम इनकी खेती बाड़ी बेस्ट तरीके से हो सके। दूसर बात है कि देखा जलवायु के भी जो है हम इनके जो झारखंड में अभी देखबा कहीं कहीं बारिश हो रहा हो कहीं कहीं बारिश नहीं हो रहा है तो एकर भी हम इनके जो है उपाय ढूंढना है कि देखा कि हम इनके झारखंड प्रदेश में क्या हो कि कभी कभी सुखाड़ पड़ जाए तो कभी अकाल हो जाए कभी जो है बेमौसम बारिश हो जाए तो ये सब जो है ना एकर से बचवे खातिर भी जो है हम इनके कोई ना कोई उपाय करे पड़ते कहे कि देखा अगर तू टपक बूंद सिंचाई से खेती बाड़ी कर ला जैसे अभी जो है ड्रिप इरीगेशन हो गलो मल्चिंग विधि से खेती करिए तो एकर से का है कि भाई देखा हम इनके जो है कम लागत होते और मुनाफा ज्यादा होते एकर से का है कि भाई देखा हम इनके सटीक बढ़िया जो है खेती भी होते और ओकर से का है कि भाई देखा हम इनके जो पोषक तत्व जरा कहिए उर्वरक शक्ति जो है वह कम हो जाए तो वो भी जो है भरपाई हो जाए। दूसर बात है देखा ड्रोन से जो है किसान भाई बहन कम समय में तू दवाई के भी छिड़काव कर सको हा सिंचाई कर सको हा कई तरह से जो है हम इनके आधुनिक जो है तरीका है जेकर से हम इन जो है खेती बाड़ी कर सको ही और कम लागत में जो है हम इन अधिक से अधिक मुनाफा कमा सको ही है। तो देखा कि ई तरीके से कहे भाई हम इनके किसान भाई बहन जो है अगर खेती बाड़ी करते हैं तो कम समय में उनका जो है से मेहनत भी ज्यादा ना करे पड़ते और पैदावार भी बढ़िया होता तो भाई हम कहल चाहबे कि किसान भाई बहन जो है पारंपरिक खेती के साथ साथ जो हम इनके बदलते जो समय हो ओकरा जो मांग है ओकर में हम इनके आधुनिक तरीका से खेती बाड़ी करे पड़ते तो एकर से का है कि हम इनके जो है पैदावार भी बढ़ जाते और जो है कम लागत में जो है हम इनके जैविक खेती भी कर सको ही है और आधुनिक खेती के भी उपाय हम इन कर सको ही है। तो देखा कि एकरे बीच हम इन जो है एगो किसान

0: धान भी आयल हथिन भाई, और ई बतेथिन कि भाई हम इनके धान के नर्सरी कर लिए, ओकर बाद हम इनके जो है अब रोग व्याधि के भी जो है नियंत्रण करे पड़तो। और देखा कि अपन धान के तू रोप दिला तो ओकर में काहे कि भाई देखभाल भी करना जरूरी है। तो ई जो है से जानकारी हम इन जो है सुनबे, तो हम इन देखा कि जो हम इनके बीच जब बुजुर्ग किसान आओ थीन भाई, तो वो बड़ी अनुभवी हो थीन, और जब अपन बात के बतवो थीन ने पूरा, तो देखवा कि हम इनके जो है से बहुत कुछ सीखे का मौका मिलो है। तो आवा सुनो ये इनकर जो है अनुभव। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर अपने किसानों को उनके अनुभव को आप तक पहुंचाते हैं। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे एक बुजुर्ग किसान, इन्हें कहेंगे कि बुजुर्ग सफल किसान है, और ये उम्र भर जो है खेती बाड़ी करते आए हैं और अभी भी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अभी किन किन फसलों को लगा रहे हैं, क्या क्या तैयारी चल रहा है इनका खेती बाड़ी का। तो सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका घर कहाँ हुआ?
1: मेरा घर सांपुर पंचायत हुआ।
0: हाँ।
1: प्रखंड कटकम सानले, जिला हजारीबाग के रहने वाले हूँ।
0: अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ?
1: मेरा नाम सेवा रजक। मैं किसानों खेती करता हूँ, धान के फसल करता हूँ।
0: अच्छा।
1: टमाटर, मिर्चा, बैंगन और धनिया, गोभी, कद्दू, करेला।
0: यानी कि जो है आप साल भर जो है इन फसलों को जो है लगाते हैं और इनका खेती करते हैं। तो अभी आप बता रहे हैं कि धान का खेती आप कर रहे हैं और अभी धान का सीजन भी चल रहा है, तो क्या अभी धान का बिहन आप कर दिए? कैसे किए, उसका क्या तरीका है आपका?
1: धान को बिहन पानी में किए हैं, और पानी नहीं मिलेगा तो सूखले भी कर देते हैं।
0: अच्छा, जैसे कहा जाता है कि सूखा जो बिहन भी करते हैं और पानी में भी गीला भी करते हैं।
1: गीला भी करते हैं।
0: तो आप जैसे बिहन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिहन करने से पहले क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ता है जहाँ जमीन में करते हैं?
1: उसका जोत कर प्लेन करते हैं ढोड़ा चौकी से, और उसके बाद दवा डाल के खाद मार करके धान पार देते हैं। जनरेशन आता है तो 20 से 25 दिन के अंदर हम लोग रोपा उनको करते हैं।
0: अच्छा, यानी 20 से 25 दिन में जो है बिहन तैयार हो जाता है, धान का रोपने लायक हो जाता है। तो जहां आप रोपते हैं धान को, तो वहां क्या क्या तैयारी करते हैं? किस
1: वहां पूरे मेढ़ा को भूस वगैरह इसी करता है, उसको कुदार से हम लोग उसको बंधवाते हैं और जोत कोड़ करके उसको प्लेन करके हम लोग खाद दे करके बिया को रोप देते हैं।
0: अच्छा, तो कितना बार जोत कोड़ करना पड़ता है?
1: पहला चांस एक चांस करते हैं, पूर्व फारंग करते हैं, उसके बाद पूर्वे चांस करके उसको तीसरा चांस में हम लोग जोत करके उसको डोहरा दे करके चौकी को बिया को रोपा देते हैं।
0: अच्छा, यानी कि जो है उसके बाद रोपाई के समय आप क्या कोई खाद वगैरह भी देते हैं?
1: भी देते हैं, बायोजम देते हैं।
0: हाँ।
1: और साथ में पोटाश देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे एक कट्ठा धान रोपाई में कितना खाद देते हैं, ये जो डीएपी बायोजैम बता रहे हैं, पोटाश?
1: एक कट्ठा में 1 kg डीएपी देते हैं।
0: हाँ।
1: और पोटाश मैंने उसके आधा देते हैं, आधा केजी। बायोजैम भी आधा केजी।
0: अच्छा।
1: और मिला करके हम लोग रोप देते हैं 40 दिन के बाद।
0: हाँ।
1: और यह खाद छींटते हैं तो हरियाली पूरे हो जाता है।
0: जैसे आप बता रहे हैं कि यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं, तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बरसात का मौसम है, अगर बारिश हो रहा है, आपका धान का खेत में पानी भरा हुआ है, तब भी आप यूरिया खाद छिड़काव करते हैं कि क्या इसके पहले कोई उपाय करते हैं?
1: नहीं, पानी जब बहती रहेगी तो हम लोग यूरिया खाद नहीं मारते हैं। पानी समतल रहेगी, खेत में रुकी रहेगी, उसके बाद खाद मारते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हमारे कमजाब में आता है, वो खाद बहता नहीं है, मेरा खेत से दूसरे खेत में नहीं जाएगा।
0: अच्छा। और जैसे है कि धान में जो है आप 40 दिन बाद बता रहे हैं कि छिड़काव कर देते हैं यूरिया खाद, तो देखते हैं कि धान जैसे थोड़ा सा बढ़वार हुआ, उसके बाद कई तरह की जो है सो रोग लगने लगता है, बीमारी होने लगता है, तो उससे बचाने के लिए क्या उपाय करते हैं?
1: कीटनाशक हम लोग दवा छिड़ते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कीड़ा मकोड़ा सब खत्म हो जाता है।
0: जैसे कैसे पहचानते हैं कि कौन सा बीमारी लगा हुआ है, कौन सा दवाई छिड़काव करना है?
1: देखते हैं फोकी में आगे देखेंगे कि पीला हो गया तो हम लोग समझ गए इसमें कीड़ा हो गया।
0: अच्छा,
1: उसके बाद हम लोग कीटनाशक दवाई उसमें मारते हैं।
0: और जैसे आप दवाई छिड़काव कर रहे हैं तो जैसे हम हमारे बहुत किसान भाई हैं जो दवाई छिड़काव करने के समय जो है मुंह से मुंह में तौलिया बांध लिए या चश्मा पहन लिए, कहे कि जैसे हम कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं तो शरीर में जो चित्ती उखड़ने लगता है या खुजली होने लगता है, आंख में पड़ गया तो नुकसान करता है, तो इससे बचाने के लिए आप क्या क्या सावधानी रखते
1: हैं? ये तो अपना पढ़ने के लिए हम लोग तौलिया ऐसी करके कर लेते हैं, नाक करके हम लोग छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, तो कितना दवा और कितना पानी मिलाते हैं, मात्रा क्या रखते हैं?
1: 10 ml हम लोग दवा देते हैं तो 10 लीटर का जो है उसका भार डबल कर देते हैं पानी।
0: हाँ हाँ,
1: और उसके बाद छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, 10 लीटर पानी में 10 ml दवा आप डालते हैं, उसके बाद उसको बढ़िया तरीके से घोल लेते हैं।
1: हाँ,
0: तो उसके बाद छिड़काव करते हैं।
1: उसके बाद मशीन से हम लोग छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, मशीन से छिड़काव करते हैं। तो जैसे बारिश का समय है, बारिश हो रहा है, तो कौन सा समय बढ़िया होता है, सुबह का समय में कि शाम के समय कि दोपहर, कौन समय में आप बढ़िया छिड़काव कर लेते हैं ताकि धान को अधिक लाभ मिले?
1: छिड़काव हम लोग सुबह शीत झड़ने के बाद तुरंत हम लोग मारते हैं, ताकि 1 घंटा भी धूप मिल गया तो मेरा दवाई सेट कर गया।
0: अच्छा,
1: 1 घंटे के बाद पानी भी पड़ेगा तो कोई नुकसान नहीं है, दवा मेरा कामयाब हो जाएगा।
0: तो जैसे कि कौन कौन सा किस्म का आप धान लाए हुए हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में देखेंगे कि पहले लोग देहाती धान लगाते थे, अब क्या है कि लोग सब हाइब्रिड धान लगाते हैं, तो हाइब्रिड में भी जो चुनाव करते हैं जैसे गहरा हो गया, तरखा हो गया, इस तरह से, तो आप कैसे चुनाव करते हैं कि हमको गहरा में तरखा में कौन सा किस्म का धान लगाना है?
1: हमको 1 नंबर जो होता है वो पानी रहता है वो खेत में, 1 नंबर का धान लगाते हैं, पनियर 64-44 और कवेरी 1 नंबर में लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: 2 नंबर में दूसरा कवेरी लगाते हैं, धनिया लगाते हैं और आये 64 लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: आये 64, सुखला 64, ललाट हो गया, ये सब लगाते हैं।
0: यानी कि जो है हमारे किसान भाई जो है इन किस्मों को जो है गहरा तरखा इस तरह से जो है जहां जरूरत हो उसके हिसाब से लगाना चाहिए। तो जैसे आप धान लगा दिए, रोपाई कर दिए, दवाई वगैरह भी बीमारी आता है तो छिड़काव करते हैं, तो और क्या क्या देखभाल करना होता है हमारे किसान को धान लगाने के बाद?
1: हाँ, उसमें अब जैसे आगे रोपा हो गया तो उसमें घास भी हो गया तो घास का दवाई भी डालते हैं, उसको नहीं दवाई डालें तो उसको थोड़ा घास को मेहनत करना पड़ता है, निकालना पड़ता है।
0: जैसे बारिश नहीं हो रहा है, धान सूख गया, तो कितना दिन में पटवन करना चाहिए?
1: उसका नामी जड़ पूरा हाल रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, सूखेगा तो नीचे से कीड़ा काट देगा तो मर जाएगा, इसलिए उसको पानी 2 तरह रहनी है।
0: अच्छा, और आपकी बात को जो सुन रहे हैं जो किसान है खेती बाड़ी करते हैं, कुछ किसान है कि खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो उनको आप एक संदेश के रूप में, उनको क्या संदेश देंगे एक संदेश के रूप में कि आज के किसान भाई मेहनत करें, कैसे खेती बाड़ी करें?
1: देखिए, किसान भाई को हम तो कहते हैं कि सब किसान फसल को कीजिए और फसल से हमारा गुजर जाता है, बाजार में जाता है, 2 रुपया होता है, बिकता है, हर फसल कीजिए, कोई फसल नहीं, धान कीजिए, गेहूं कीजिए, चना कीजिए, सरसों कीजिए, पालक कीजिए, मूली कीजिए, गाजर कीजिए, सब फसल कीजिए और ये फसल बाजार में यानी कि बेचिए, 2 रुपया होगा अपने घर में, तेल साबुन का भी बच जाएगा, अपना घर घरेलू खर्चा भी हो जाएगा।
0: यानी कि जो है हमारे किसान भाई को खेतीबाड़ी करना चाहिए ताकि जो है अपना घर का जो है पूर्ति कर सकें और आमदनी भी हो सके, और जो है हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो खेतीबाड़ी ही जो है पर हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो निर्भर है। तो सेवा रजक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, इतना बढ़िया जानकारी दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो देखा अभी।

0: जानकारी देवे थलथिन बुजुर्ग किसान सेवा रजक और उनकर से बातचीत कर लेथिन उमेश रजक। और देखा भाई अब हम इन कार्यक्रम में आगे बढ़ो है और देखा कि आज के अगर बाजार भाव बता दिए तो हम इनके किसान भाई बहन देखा जो साग सब्जी के खेती करो थी तो उनकर खातिर ले जो है से सहूलियत हो जाए और मौसम के भी जानकारी बता दी है। तो देखा कि आज के लाल आलू रहे है बाजार भाव 25 से 30 रुपये प्रति किलो, सफेद आलू हो 20 से 25 रुपए प्रति किलो, प्याज है 30 से 35 रुपए प्रति किलो और फूलगोभी के बाजार भाव रहले हो 30 से 40 रुपए प्रति किलो। देखा कि अगर पत्ता गोभी के बात करिए तो 30 से 35 रुपए प्रति किलो रहले है, पटल हो 30 से 40 रुपए प्रति किलो, भिंडी है 25 से 30 रुपए प्रति किलो, नेनुआ हो नेनुआ और कद्दू 20 से 25 रुपए प्रति किलो रहले है। देखा कि हरियर मरचाई के बात करिए तो 80 से 100 रुपये प्रति किलो और शिमला मरचाई है 50 से 60 रुपये प्रति किलो, गाजर हो 35 से 40 रुपये प्रति किलो और बीन हो 50 से 60 रुपये प्रति किलो, मुराई है 25 से 30 रुपये प्रति किलो और धनिया पत्ते 100 से 120 रुपये प्रति किलो। देखा कि आदि के बात करिए तो 120 से 150 रुपये प्रति किलो रहले है और खीरा हो 20 से 25 रुपए प्रति किलो, बिलौती है 30 से 40 रुपए प्रति किलो और लाल साग और पालकी साग हो 25 से 30 रुपए प्रति किलो। अगर बाजार भाव की बात करिए तो देखा कि आज के तापमान रहले अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहले हो 24 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता है 95%। देखा कल के बात करिए तो कल के अधिकतम तापमान रहते 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहते 24 डिग्री सेल्सियस। देखा कि इस तरह से जो है हम इनके किसान भाई इनके बतोहीन कि भाई अधिक से अधिक हम इनके मौसम में का जानकारी है एक बारे में। तो देखा कि फिर हम इन बात करबे आवाज सुनो ये एगो जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: देखा भाई अब जरूरी संदेश के बाद जो है हम किसान भाई बहन से बतियाल चाहबन कि देखा हम इनके जो प्राकृतिक संसाधन है जो हम इनके जो है प्राकृतिक से मिलल है भाई तो का है कि ओकरा हम इनके अगर बेस्ट तरीके से बचा के रखिए कि देखा कि हम इनके जो आवे वाला पीढ़ी है ओकर खातिर जो है बेस्ट रहते। अब देखा कि हम इनके जे भी प्राकृतिक से मिलल है भाई उपहार के रूप में ओकरा हम इनके समझदारी से जो है अपन काम में लावे के चाहिए। अब देखा कि एकर हम इनके ये उद्देश्य है कि हम इनके ये बचा के रखना है अनमोल है जेकरा खत्म ना होए के चाहिए ताकि हम इनके जे जैसे हो गलो कि जे हम इनके पर्यावरण हो तो ओकरा का है कि प्रकृति में जो है जे जीवन है जीव जंतु है जीव है ओकरा बचा के रखिए ताकि हम इनके पर्यावरण जो है से जे खराब ना हो सके। दूसरा बात है कि देखा हम इनके अपन भविष्य के भी सुरक्षा करना है ताकि पानी ईंधन खेती बाड़ी सिंचाई ये जो है हम इनके बेहतरी से हो सको है। और देखा कि हम इनके पानी के भी बचा के रखना हो ताकि जो है नल खुला ना छोड़ा छोट छोट बात के ध्यान रखा पेड़ लगावा अपन ऊर्जा के बचावा ताकि हम इनके जो है बेहतरी से जो है अपन जो प्राकृतिक उपहार है ओकरा बचा के रखिए। देखा हम इनके बहुत तरह से बात है जेकरा हम इनके ध्यान रखना है ताकि जो है हम इनके सही समय पर इस एकरा जो है से उपयोग में लावल जा सको है। देखा भाई खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम तोहर साथ हाजिर हलियो, अब आज के समय जो है से विदा लेवे के भी समय हो गए है तो एकरा जो है से एकरे साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमरा उमेश के विदा दा जोहार।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में कथित अनियमितता मामलों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी अनियमितता प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इस परीक्षा विवाद के बीच कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। जेपीएससी प्रकरण पर छात्र आंदोलनकारियों के समक्ष मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और संजय यादव ने कहा कि सरकार इस समस्या का हल वार्ता के माध्यम से करने को तैयार है। जेपीएससी अनियमितता प्रकरण में आज सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हो सकती है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधानसभा में कहा कि सीबीआई जांच से जुड़े पहलू पर सरकार विचार करेगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों से वार्ता के बाद ही सीबीआई जांच का निर्णय सरकार लेगी। दुमका जिले में गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वालों से राशि की वसूली की जा रही है। जिले के रानेश्वर प्रखंड में सरकारी नौकरी करने वाले की पत्नी तथा गलत तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाले 4 लाभुकों से प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने 2,12,240 रूपये वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। और धनबाद के मैथन रोड स्थित झिलिया पुल निर्माण के दौरान भारी बारिश में तीसरी बार डायवर्जन बह जाने के बाद पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जनप्रतिनिधियों ने निर्माण में लापरवाही और घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए अधिकारियों का घेराव किया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं 6:02 और 38 सेकेंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा मित्रों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवा वाणी।

कार्यक्रम युववाणी सुन रहे सभी युवा मित्रों को अशोक का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कैसे हैं आप मित्रों भाई? आप सब यही उम्मीद करते हैं कि कुशल मंगल होंगे, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के युवा अगर हम इस वक्त हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो खुशहाल ही होंगे, क्योंकि इधर दो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अब आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी सूचना तो आप ही हमें बता सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हजारीबाग आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हो रही है। लोग अपने अपने खेतों में हैं और जो है सो रोपनी का कार्य जो है सो किन्हीं का खत्म हो चुका है, किन्हीं का कंटिन्यू जारी है। लेकिन आपसे एक बेहद अपील है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पर हम चर्चा करें, आपसे आग्रह है कि जैसे ही बारिश होती है, बारिश के साथ आजकल देखा यह जा रहा है कि काफी मेघ गर्जन होता है, बिजली काफी चमकती है, थंडरिंग होती है, तो भाई जैसे ही बारिश शुरू हुई और आप देख रहे हैं कि बारिश के साथ साथ गर्जन भी हो रहा है, तुरंत जो है सो अपने घर की ओर भागे। पेड़ के पीछे नहीं जाना है, खुले मैदान में भले ही आपको लेट जाना है, कहीं जगह ना मिल रहा हो तो, लेकिन जल्दी से किसी घर में अपने आप को सुरक्षित रख लेना है। ऐसा नहीं कि भाई कल बारिश नहीं होगी तो दिन भर बारिश नहीं होगी, तो भाई जान से बढ़कर जान है तो जान है, आपकी खेती बारी नहीं है, अपने आप को सुरक्षित

पूरे संतप्त परिवार को। तो ऐसी गलती कतई ना करें और जो आप सब जो है सचेत रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों आज है 6 अगस्त और आज के दिन आपको पता ही होगा कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले की याद दिलाता है और इसके साथ हमें संदेश देता है, शांति का संदेश देता है और यह भी हमें बताता है कि परमाणु हथियारों का युद्ध के दौरान जो है हर हाल में विरोध होनी चाहिए, इस बात का संकल्प लेने की का वक्त है। देखिए आज के दिन 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर हिरोशिमा में जो है सो ये बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ये B-29 बम वर्षक विमान था, एलोना गे का प्रयोग किया गया था और बम का नाम था लिटिल बॉय। इस बम ने तुरंत ही इस बम के विस्फोट से भयानक विस्फोट हुआ और इससे जो रेडिएशन निकला, जो विकिरण निकला, उससे तुरंत ही मिनटों में 130,000 लोगों की मौत हो गई। चाहे वो बाहर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे या कहीं भी काम कर रहे थे, घरों के अंदर थे, सांस लेने में कठिनाई होने, दिक्कतें होने लगी और पूरा चारों तरफ जो है सो लाशें ही लाशें बिछ गई। कहने में बहुत बुरा लगता है, नेगेटिव बातों का प्रयोग हम सब आकाशवाणी के माध्यम से नहीं करते हैं, लेकिन ये आज का ये एक कठोर सत्य है। तो श्रद्धांजलि स्वरूप इस भयंकर त्रासदी में जान गंवाने वाले मासूम लोगों को याद करना आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है कि आज के दिन दुनिया भर में अहिंसा और भाईचारे के संदेश को और शांति को बढ़ावा हम सब दें और भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोकने के लिए परमाणु हथियारों को खत्म करने का कि हम सब सभी देशों से अपील करें। तो ये थी छोटी सी जानकारी हिरोशिमा दिवस पर। श्रोताओं अब हम आपका एक मूल मंत्र है, सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र है अनुशासन और परिश्रम। ये दो चीजें अगर आपके साथ है, आपके पास है, इन चीजों का आप उपयोग कर रहे हैं, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है और परिश्रम भी अगर आप कर रहे हैं तो निसंदेह रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या है कि अनुशासन आपको सही समय और सही काम करने की शक्ति प्रदान करता है और परिश्रम आपको आपके लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देता है। इन दोनों के बिना बड़ी सफलता पाना नामुमकिन है। इसके लिए आपको नियमावली आपको बनानी होगी, यह आपके समय को पक्का करेगा और इधर उधर मन भटकने से, गलत आदतों या बुरी संगतों से आपको दूर रखेगा। मानसिक शक्ति या कठिन समय में भी धैर्य और संयम आपको बनाने में मदद करेगा, बाधाओं का नाश करेगा। यह बड़ी और बड़ी मुसीबत को हरा देता है आपका मेहनत और लगन। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसका फल जरूर मिलेगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी परिश्रम और अनुशासन और मेहनत पर और फिर हिरोशिमा दिवस पर। एक खूबसूरत सा गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, वही खेतों में हल चलाते हुए, जो मनोज कुमार ने गाया था काफी समय पहले उपकार फिल्म में। आइए सुनते हैं।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम युवानी में एक बार फिर से मैं अशोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अब चलिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको क्या सुनवा रहे हैं इस पर हम चर्चा करें, उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपकी रुचि जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र चाहे वो खेलकूद से संबंधित हो या फिर लेखन से संबंधित हो या फिर राइटिंग से, या फिर अच्छा आप कविताएं लिखते हैं, अच्छे गीत लिखते हैं, या फिर आपके गायकी में आपकी रुचि है, या फिर आप स्टोरी राइटिंग में भी अपनी करियर बनाना चाहते हैं, बहुत क्षेत्र सारा विशाल समुद्र पड़ा हुआ है करियर के चुनाव है, तो आप में अगर इन सब में भी टैलेंट है तो आप उस ओर भी ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, और अभिभावकों को मोटिवेट करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि अगर आप हमें डॉक्टर इंजीनियर के लिए भेजेंगे निसंदेह रूप से वहाँ असफलता ही मिलेगी, इसलिए आपकी जो इच्छा है उनका वो सम्मान करें। अगर फिर भी आप पे वो प्रेशर डालते हैं तो आप किसी मित्र बंधु या फिर शुभचिंतक जो हैं या फिर रिलेशनशिप में जो हैं उन्हें लेकर साथ में जाएं और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि भाई जहां आपकी रुचि है उस रुचि के अनुसार जो है सो आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने में परिवार आपका मदद करें। तो चलिए, ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम आपको एक कविता सुनवा रहे हैं, तो ये कविता सुनिए और देखिए कि कितनी अच्छी कविताएं हैं। स्मृति कुमारी की ये कविताएं सुनिए

0: अगर हम बेहतर लिख सकते हैं तो कविताओं का भी विशाल जो है सो संग्रह पड़ा है और उसमें आपको स्ट्रगल नहीं करनी होगी, उसे आप गीतों का शक्ल दे दें तो फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी आपके दरवाजे खुले हुए हैं। आइए सुनते हैं ये कविताएं स्मृति कुमारी से।
1: नमस्ते, मेरा नाम स्मृति है। आज आप सबके समक्ष मैं दो कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूं। पहली कविता का शीर्षक है जीवन का सत्य। एक दिन मृत्यु इंसान से पूछती है, लोग मुझसे भयभीत क्यों होते हैं? इंसान कहता है, तुम जब आती हो शोक का संदेश संग लाती हो, मेरा तन मन सब बेरंग कर चली जाती हो। अपना मन शांत और तन को मैं मूर्छित पाता हूँ, मोह माया सब छोड़कर तुम्हारे संग चला आता हूँ। धन को तुम संग लाने नहीं देती, बस कर्म तुम साथ ले जाती हो। नाम शोहरत और इज्जत का फायदा क्या, नाम शोहरत और इज्जत का फायदा क्या जब तुम सब मिट्टी में मिलाती हो। तुम क्षण भर में सब खत्म कर जाती हो, सारे रिश्ते तोड़कर संग ले जाती हो। मेरे अपनों को तुम कितना रुलाती हो, अब बताओ तुम इतना क्यों डराती हो? मृत्यु उपहास उड़ाते हुए बोलती है, तू कितना बेवकूफ है रे इंसान, तू अपना किसको कहता है? सब तो भ्रम है जिसके साथ तू दिन भर रहता है, जिनके आंसुओं को देखकर तू अपना समझता है, जिनके आंसुओं को देखकर तू अपना समझता है, वही तो बाद में बंटवारे के लिए उलझता है। जिस पैसे को कमाते कमाते तू मर जाता है, वो पैसा शमशान के बाहर ही रह जाता है। जीवन के पहले सच मृत्यु को तू धिक्कारता है, जीवन के पहले सच मृत्यु को तू धिक्कारता है, अपितु हर भ्रम और माया को शान से स्वीकारता है। तेरे शहरत का डंका शमशान में नहीं बचता है, तेरे शोहरत का डंका शमशान में नहीं बचता है, यहाँ तो बस तू अपने कर्मों से सचता है। दो दिन तक जो लोग तेरे लिए रोते हैं, दो महीने बाद तुझे भूलकर तेरे ही पैसे पे सोते हैं। जो नाम पाने के लिए तू दिन रात घिघटता है, जो नाम पाने के लिए तू दिन रात घिघटता है, वही नाम तेरे शव से लिपटने से डरता है। बात बात पर जो तू अपने बैंक बैलेंस के डिजिट्स को गिनवाता है, वो बोरा भर पैसा शमशान में नो एंट्री पाता है। जो तू सोने के जेवर माप के बनवाता है, क्या वो मृत्यु के बाद काम आता है? तेरा पैसा तुझे शमशान में एसी बुकिंग नहीं दिलाता है, तेरा पैसा तुझे शमशान में एसी बुकिंग नहीं दिलाता है, ना ही श्वेत चादर की जगह सोने का कफन बनाता है। तेरी ऑडी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तो यहीं रह जाती है, तेरी ऑडी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तो यहीं रह जाती है, आखिर शव तो तेरी भी चार बांस पर ही जाती है। जिस मिट्टी पे तू सोता है उसी मिट्टी पे एक फकीर भी सोता है, जिस मिट्टी पे तू सोता है उसी मिट्टी पे एक फकीर भी सोता है। जो कफन तू पहनता है वही एक फकीर भी पहनता है, तो फिर तू ये मैं का अहम कहां से लाता है जब सब कुछ भगवान करता है? कर्म के बजाय तू जिंदगी भर धन के पीछे भागता है, कर्म के बजाय तू जिंदगी भर धन के पीछे भागता है, मंदिर और अनाथ आश्रम की जगह होटलों में झांकता है। कर्म की बात पर तू ये कहता है कि अरे मरने के बाद वो सोचा जाएगा, परंतु मृत्यु के बाद तो बस अफसोस रह जाएगा। याद रहे शमशान में नाम नहीं कर्म काम आता है, वहां गिनती बैंक बैलेंस के डिजिट्स की नहीं होती, बल्कि इसकी होती है कि कितने भूखों को आपने दी थी रोटी। वहां अमीर भी एक है और फकीर भी एक है, वहां अमीर भी एक है और फकीर भी एक है, गिनती बस उनकी अलग है जिनके कर्म नेक है। स्मरण रहे जहां सबकी शान समान है वही शमशान है, वही शमशान है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। घटित हुई थी त्रेता युग में, पर कलयुग में भी इसका गान है। आओ सुनाऊं एक कहानी जिसका शीर्षक

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। दशरथ की वो नंदन है, कौशल्या की आंखों का तारा, राजपाट होने पर भी सरलता में जीवन बिताया सारा। विश्वामित्र के शिष्य हुए और जनक जी के जमाई, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मिथिला में अपनी पहचान बनाई। पिता के वचन का मान रखा, छोड़ दिया राजपाट, दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, जोहते जोहते उनकी बाट। लक्ष्मण के हट पे उन्हें भी साथ ले लिया, लक्ष्मण के हट पे उन्हें भी साथ ले लिया। 14 वर्ष के वनवास में उर्मिला ने अयोध्या में रहकर लक्ष्मण का इंतजार किया। वन के जानवरों ने भी क्या सौभाग्य पाया, वन के जानवरों ने भी क्या सौभाग्य पाया, लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने वहां अपना डेरा जमाया। शबरी का भी जूठा खाया, चरण धुला कर केवट को निष्पाप बनाया। रावण ने अपने परिवार की मुक्ति के लिए जान कर ये खेल रचाया, रावण ने अपनी परिवार की मुक्ति के लिए जान कर ये खेल रचाया। श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर अपने काल को स्वयं सजाया। मर्यादा में रहते हुए रावण को परास्त किया, मर्यादा में रहते हुए रावण को परास्त किया। सारी लंका जल गई, पर श्री राम ने कभी न अभिमान किया। जो कभी हार न सकता था उसे श्री राम ने हराया, जो कभी हार न सकता था उसे श्री राम ने हराया। जिसका अभिमान सर चढ़कर बोलता था उसको धूल चटाया। अंजनी सूत को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया, अंजनी सूत को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया। उन्हें आम से खास श्री राम दूत महाबली हनुमान बनाया। हर राम नवमी तुमने सियावर रामचंद्र की जय खूब चिल्लाया, हर राम नवमी तुमने सियावर रामचंद्र की जय खूब चिल्लाया। बताओ जरा कितनी बार मर्यादा को अपना गुण बनाया। मैं ये नहीं कहती कि श्री राम बन जाओ, मैं ये नहीं कहती कि श्री राम बन जाओ, पर उनके गुणों को अपने अंदर जरूर लाओ। हर युग में श्री राम एक ही है और एक ही होगा, हर युग में श्री राम एक ही है और एक ही होगा। क्योंकि हर औरत को मां की दृष्टि से किसी ने नहीं देखा, अपनी पत्नी पर किए गए अत्याचार को नहीं रोका, कभी मर्यादा में रहना जरूरी नहीं समझा। इसीलिए हर युग में श्री राम एक ही है और बस एक ही होगा। धन्यवाद।
1: स्मृति कुमारी से उनकी कविताएं आप सुन रहे थे। तो देखा दोस्तों कितनी अच्छी कविताएं थीं। तो हमने इसलिए आपको कहा कि आपके अंदर भी अगर ऐसी प्रतिभा है, आप बेहतर लिख सकते हैं, तो बेशुमार करियर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो आज के कार्यक्रम का समय देखिए समापन की ओर अग्रसर है। आज के कार्यक्रम का समय जो है सो समापन की ओर अग्रसर है। श्रोताओं, तो आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त अशोक को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6:31 हुए हैं, वक्त तो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। बारिश का मौसम है और 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बिल्कुल बारिश का ही ये गीत है, बड़ा मजा आएगा। कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने खूबसूरत आवाज बख्शी है इस गीत को, आइए सुनते हैं। शानदार संगीत दिया था पंचम दाने यानी आर डी बर्मन ने, और आर डी बर्मन साहब की ये आखिरी फिल्म थी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

प्रेम कहानी सुन का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

हिमालय की गोद में जय श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश साहब के स्वर में। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है इज्जत, आवाज मोहम्मद रफी साहब की।

श्रोताओ, मोहम्मद रफी साहब के गाए इज्जत फिल्म की इसी खूबसूरत गीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत का यह सफर खत्म होता है। अनुमति दीजिए, अशोक को नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है फिल्म 102.1 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 होने को हैं। अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से होगा जहां सब सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार जिले में आज का।

0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर घर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूर्ण

0: नम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में विधानसभा सत्र गरमाया। छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी रहा जारी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी प्रकरण पर अध्यक्ष सहित अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की रखी मांग। इधर सरकार ने की छात्रों से वार्ता की पेशकश। रांची स्थित गृह रक्षा वाहिनी के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी से लैस 58 आधुनिक अग्निशामक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में नो मैप और तार्किक विसंगति वाले किसी भी मतदाता का नाम ईआरओ स्तर पर सुनवाई और नोटिस के बिना नहीं हटेगा। और कल रांची सहित पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन भी प्रवेश कर गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
1: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: इधर जेपीएससी प्रकरण पर मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और संजय यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इस समस्या का हल वार्ता के माध्यम से करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को यह तय करना है कि कब और कहां सरकार से वार्ता करनी है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामला और जेपीएससी का मामला पूरी तरह से अलग है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी अनियमितता प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।
2: झारखंड की जनता की आज मांग है, जो एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, जो नौकरी को बेचा गया है, उन सारे एग्जामों को रद्द करे सरकार और 7 अध्यक्ष, सदस्य और सचिव और परीक्षा नियंत्रक जैसे जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करे, सरकार गिरफ्तार करे।
0: रांची के धुरवा स्थित गृह रक्षा वाहिनी के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी से लैस 58 आधुनिक अग्निशामक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि छोटे आकार की ये वाहन अब घनी बसाहट के अंदर जाकर भी आग से लोगों की जान बचाने में सक्षम होंगे।
3: नई तकनीक के साथ आज फायर सर्विसेज भी अपने आप को निरंतर जोड़ने में लगा हुआ है। शहरों की बसावट आप कई जगह देखते होंगे कि बड़ी गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की होती हैं वो नहीं जा पाती हैं, तो उन जगहों के लिए जो आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं निश्चित रूप से काफी प्रभावी होंगी। और सिर्फ आग ही नहीं, इसमें तैनात जवान सिर्फ आग बुझाने का ही काम नहीं बल्कि उस आग में फंसे लोगों की जान बचाने का भी काम इनके जिम्मे होता है।
0: लातेहार जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की है। ब्यूरो ने मनिका प्रखंड की बरकाडीह पंचायत के पंचायत सचिव नागेश्वर रजक को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी

0: स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियाँ, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
1: यहाँ मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खान पान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए, अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नो मैप और तार्किक विसंगति वाले किसी भी मतदाता का नाम ईआरओ स्तर पर सुनवाई और नोटिस के बिना नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने दावा आपत्ति के अधिक मामलों वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी नियुक्त करने और पात्र लोगों को फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर नाम जुड़वाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। धनबाद में अब पासपोर्ट सेवा पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस हो गई है। पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक लगभग पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इससे पासपोर्ट बनने में लगने वाला समय कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू कर दी गई है।
3: जिला में पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 1 तारीख से 100% डिजिटल हो गया है। कोई पेपर मूवमेंट नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस से जो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट आती है वो ऑनलाइन आती है। जो जिले में पुलिस ऑफिस से थाने की जो प्रक्रिया थी वो ऑफलाइन थी, उसको भी 100% डिजिटल कर दिया गया है। 1 तारीख से वो डिजिटल हो गया है। रिजल्ट से मैं काफी खुश हूँ, बिकॉज जिस दिन डिजिटलाइजेशन हुआ था उस दिन 1300 के आसपास पेंडिंग था और आज के डेट में लिया है तो 580 के आसपास पेंडिंग।
2: ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना सहित अन्य योजनाओं के विकास संकेतकों के अनुसार रामगढ़ जिला ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि विभाग की योजनाओं के अलावा महिलाओं के मानदेय भुगतान में भी रामगढ़ जिला आगे है।
4: 25-26 का अभी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा आकलन एक करके दिया गया है जिलावार, जिसमें रामगढ़ जिला के को विभिन्न मैट्रिक्स जो होते हैं नरेगा के, जैसे मैंडेज जनरेशन हो गया, बिरसा हरित ग्राम हो गया या फिर महिलाओं के मैंडेज से संबंधित हो गया, तो इन विभिन्न इंडिकेटर्स में रामगढ़ जिला बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, इनफैक्ट टॉप परफॉर्मेंस किया है।
2: देवघर में चल रहे श्रावणी मेले में कांवरियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। उपायुक्त सौरभ कुमार भवानी ने बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा धाम में जलाभिषेक कर चुके हैं। हर दिन करीब 1 से 1.5 लाख कांवरिया कतार में लगकर जल चढ़ा रहे हैं
5: और फर्स्ट मंडे के हिसाब से वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी फिगर थी, तो हम लोग की सारी तैयारी जो है अब उसी के इर्द गिर्द हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया है कि अगर हम लोग सभी मंडे के लिए तैयार हो जाते हैं तो बाकी अगले दिन के लिए वो तैयारियां एनीवेज काफी रही। बहुत ही स्पेसिफिक तैयारियां की है मंदिर परिसर के लिए और मंदिर परिसर के आसपास के चौराहों एवं रास्तों के लिए।
2: गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मौसम विभाग के अनुसार कल रांची सहित पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। रांची, गुमला और खूंटी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का भी अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में विधानसभा सत्र गरमाया। छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी रहा जारी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी प्रकरण पर अध्यक्ष सहित अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की रखी मांग। इधर सरकार ने की छात्रों से वार्ता की पेशकश। रांची स्थित गृह रक्षा वाहिनी के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिनी वाटर टेंडर विद मिस्ट टेक्नोलॉजी से लैस 58 आधुनिक अग्निशामक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा ड्राफ्ट मतदाता सूची में नो मैप और तार्किक विसंगति वाले किसी भी मतदाता का नाम ईआरओ स्तर पर सुनवाई और नोटिस के बिना नहीं हटेगा और कल रांची सहित पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा इसका आयोजन एक मंच पर किया जाना है। हो, मुंडा, संथाल, उरांव तथा बिरहोर आदिवासियों के सदस्यों के अलावा कई संगठन भी इसमें भाग ले रहे हैं। आयोजन समिति के इपिल सामड ने बताया कि आयोजन में आदिवासियों का बड़ा समागम होगा, जिसमें समाज के लोग एक दूसरे के इतिहास और कला संस्कृति से अवगत होंगे।
2: ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के लिए तैयारी चल रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आदिवासियों की सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक या अन्य जो सामाजिक मुद्दा है उन मुद्दों पे मैंने हमारे लोगों को अवगत कराना है कि आज हमारे आदिवासी कहाँ हैं, क्या हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ हो आदिवासियों के नहीं है, हो, मुंडा, संथाल, उरांव, बीरहोर समुदाय के द्वारा और विभिन्न आदिवासी संगठनों के लगभग 35 से ज्यादा आदिवासी संगठनों की संयुक्त तत्वाधान में हो रही है। और इसमें हमें 50 स्टॉल लग रहा है, 50 स्टॉल में हमारे हस्तशिल्प चीजों को प्रदर्शनी करेंगे। साथ जैसे व्यंजन में हम जैसे महुआ का एक लड्डू जो मिक्स करके हम बना रहे हैं। लोग अक्सर यहाँ हमारे क्षेत्र में महुआ को एक शराब के माध्यम से ही वो बना रहे हैं और हम लोग ये महुआ को एक पौष्टिक आहार के रूप में एक मिठाई बना करके हम लोग इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: जिले में विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चक्रधरपुर में बंगाली एसोसिएशन के तत्वावधान में वृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया गया है।
3: शुरुआत किए थे 1980 में, आप जानते हैं, और अभी वर्तमान अवस्था में रक्त का संकट से भी जूझ रहे हैं। तो दोनों अवस्था में हम लोग इस तय किए हैं कि चूंकि हम लोग शुरुआत किए थे, फिर बहुत सारे संस्था इसको आज तक जिंदा रखे हैं, चक्रधरपुर को ज्यादा ये हमें पहुंचाए हैं रक्तदान के क्षेत्र में, तो तमाम संस्थाओं को हम लोग उस दिन सम्मानित करेंगे। रक्तदान शिविर में हर एक रक्तदाता के लिए एक गिफ्ट, चूंकि रक्त अनमोल है, हम लोग कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते हैं या वो उपेक्षा भी नहीं रखते हैं। रक्तदान जो करते हैं वो अपने इच्छा से करते हैं, तो लेकिन हम लोग अपना तरफ से हर एक रक्तदाताओं को एक रेनकोट सबको उपहार देंगे। इसीलिए आप सभी से मेरा बहुत आग्रह है, मैं गुजारिश करता हूं आप सभी से कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और जो संकट से हम गुजर रहे हैं अभी, जो इतना जो कष्ट है हमारा रक्त का, क्योंकि चाईबासा में भी हमेशा उपलब्ध नहीं रह रहा है और सब जमशेदपुर ब्लड बैंक के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, तो आप प्लीज आइए और रक्तदान कीजिए और हमारे साथ में रहिए।
1: जिला प्रशासन की ओर से भी रक्तदान को बढ़ावा दिया जा रहा है और नियमित शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
4: प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक उदित वाणी, रांची के विशेष संवाददाता उमा पद महतो। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण

0: किशोर ने पिछले सत्रों के दौरान सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुपालन से संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन में पेश किया। वहीं सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही पहले दिन प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक मास्क पहनकर सदन में पहुंचे, जिस पर लिखा था, न्याय चाहिए धोखा नहीं। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराओ। इसके साथ ही भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं से संबंधित कथित अनियमितताओं को सदन में रखने का प्रयास किया और पार्टी विधायकों ने इसे लेकर पोस्टर लहराया, परंतु विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने इसकी अनुमति नहीं दी और विधायकों से अपील की कि आज प्रारंभिक दिन है, इसलिए आज छोड़ दें। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपना प्रारंभिक वक्तव्य दिया। प्रारंभिक वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने वरिष्ठ विधायक हेमलाल मुर्मू, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, निरल पूर्ति, रामचंद्र सिंह और नीरा यादव को मॉनसून सत्र के लिए सभापति नियुक्त किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने अपनी अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति गठित की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव, निरल पूर्ति और अरूप चटर्जी को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वहीं सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद स्पीकर कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सोमवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षा विवाद पर चर्चा के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इधर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि 5 कार्य दिवस वाले संक्षिप्त मॉनसून सत्र से राज्य की जनता को अनेक अपेक्षाएं हैं और उन्हें विश्वास है कि यह सत्र लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप सार्थक, गरिमामय और जनोन्मुख सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च जनमंच है। संविधान ने विधानमंडलों को 3 मूलभूत दायित्व दिए हैं, जिसके तहत विधेयकों पर विचार कर कानून बनाना, राज्य की वित्तीय व्यवस्था और बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करना और कार्यपालिका को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना है। इन्हीं संवैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए इस मॉनसून सत्र की कार्यसूची निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट 7 अगस्त को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि 12 अगस्त को गैर सरकारी संकल्प को लेकर सदस्यों के लिए समय निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में झारखंड के विकास, कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण जैसे विषयों पर गंभीर और रचनात्मक चर्चा की आवश्यकता है। प्रारंभिक वक्तव्य देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शोक प्रस्ताव लिया तथा विगत सत्र से अब तक की अवधि में दिवंगत राजनेताओं, कलाकारों, समाजसेवियों, साहित्यकारों और आम नागरिकों को सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नीट परीक्षा के दिवंगतों और असम के बाढ़ में मृतकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की गई। राज्य सरकार की ओर से असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की भी घोषणा की गई। शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक उदित वाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम झनकार। आगाज कर रहे हैं बेटा फिल्म के इस खूबसूरत युगल गीत के साथ।

नई फिल्म महबूबा के इसी गीत के साथ जिसे गाया था सोनू निगम और साथियों ने आज का झनकार कार्यक्रम समाप्त होता है।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार आकाशवाणी का। यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जल है तो कल है।
1: सब सुनू ये किसान भाई बहिन मन के विष्णु भाई संगे
0: संध्या बहिन बटले
1: जोहार। और कहू का हाल समाचार है संध्या बहिन?
0: हमर हाल चाल एकदम नगद है विष्णु भाई, अपन दने बताऊ।
1: हमरे बटे भी नगदे आए और असरा करीला सब सुनवाया भाई बहिन मन कर भी हालचाल बेस हुई नगदे हुई।
0: हाँ भाई, बता देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: विष्णु भाई, हमरे कर किसान भाई बहन मन खेती कर संगे पशुपालन भी कराना है नहीं?
7: कराना और बढ़िया भी है, काले की खेती बाड़ी कर साथ साथ जैसे मुर्गी पालन हो गलक, बकरी पालन हो गलक, ये सब करे से बेस लाभ भी भेटायला। तो देखो, मुर्गी पालन एगो बढ़िया अवसर है हमरे कर किसान भाई बहन मन ले, काले की मुर्गी पालन करे से बढ़िया लाभ भेटायला। तो देखो, मुर्गी पालन बहुते आसान भी है और कम लागत में शुरू करल जा सकेला, और इकर में किसान संगठन बढ़ से भी मदद मिल जा सकेला और मिलेला भी। और बॉयलर जो मुर्गी होएला ये एकदम कमे दिन में तैयार हो जाएला, 5 से 6 सप्ताह में बाजार में बेचे जैसन हो जाएला।
6: हाँ भाई, हमरे अगर कोनो पशु के पोसत ही तो हमरे के उकर पूरा ध्यान रखे के है नी, उकर रहे ठाव मन कर बढ़िया व्यवस्था करे के है, हवादार शेड मन के बनाए के रखे के है, बेरा बेरा में टीका लगवाए के है, और कोनो बीमारी हो गेले विशेषज्ञ डॉक्टर मन से हो सलाह ले के है।
7: हाँ हाँ, नकदे बात के कहली।
6: तो विष्णु भाई, गोठ बात तो हमरे मन करते रहब, अब हमरे कार्यक्रम के आगे बढ़ेला पहले जानीला आज हमरे मन का जानकारी कर इकर बारे में बताए दो रे।
7: आज कर बात में हमरे मन बरसात कर मौसम में पशु मन में बीमारी होएला और उके कैसे देखभाल करे के है और उके कैसे बचाए के है, इकर विषय में बताबे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार और इनका से गोठियाबे मनोज कुमार।
6: कृषि गीत सुनब नागपुरी में देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल तले।
7: नई उम्र कर नई फसल में एगो महिला किसान कर बात के सुनब, जे की सफल महिला किसान है पुष्पा देवी और इनकर से गोठिया है अरविंद मिश्रा।
6: हाँ भाई, तो चलो अब जानकारी करेला आज की बात में। बरसात कर मौसम में पशु मन कर समुचित देखभाल और बीमारी से बचाव लगिन उपाय बताते हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार और इनकर से बतियाए है मनोज कुमार।
7: तो चलो सुनीला।
8: किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। आज हम जानेंगे बरसात के मौसम में पशुओं की समुचित देखभाल और बीमारियों से बचाव के उपाय के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, वरीय वैज्ञानिक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय रांची। रविंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
9: जी नमस्कार।
8: जैसा कि हमारे किसान भाई खेती बाड़ी तो करते हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि पशुपालन भी करते हैं, तो झारखंड में कौन कौन से मुख्य रूप से पशु हमारे किसान भाई पालते हैं?
9: खंड में मुख्य रूप से जो पशुपालन होता है उसमें बकरी पालन है, सुकर पालन है, गाय पालन है, मुर्गी पालन भी हमारे जो किसान भाई करते हैं, तो अपने पसंद के हिसाब से अलग अलग जो किसान हैं अलग अलग पशुओं का पालन करते हैं और उनकी देखभाल भी बहुत ही जरूरी होती है।
8: और मौसम की बात करें तो मौसम आधार पर हम लोग किस तरह किसान भाई अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं?
9: अभी बरसात के मौसम की यदि बात करते हैं तो बरसात के मौसम में बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है, और इस समय जो पशुओं की देखभाल की बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव की बात करते हैं, उसमें 2-3 बातें ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम है कि आवास व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा सूखा होना चाहिए, ऊंची जगह पे आवास होना चाहिए, बिल्कुल वेंटिलेटेड होना चाहिए, स्वच्छ हवा का आदान प्रदान होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आहार बिल्कुल इस समय जो देते हैं वो बिल्कुल साफ स्वच्छ सूखा आहार होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, पुराना या भींगा हुआ पहले का उस तरह का गीला आहार जो है वो पशुओं को नहीं देना चाहिए, और भंडारण भी अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज है कि इस समय बीमारियां जो होती है उसके लिए टीकाकरण बहुत ही जरूरी है, जो भी पशु पालते हैं जो भी टीका जो बीमारियां होती है उसका टीकाकरण अवश्य कर लें। इसके साथ ही साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी विशेष देखभाल की जरूरत होनी इस समय करनी पड़ती है।
8: अगर हम आहार की बात करें तो इस मौसम में सबसे अच्छा आहार कौन सा हो सकता है?
9: अभी जो आहार की बात करते हैं तो अभी जो भी बकरी पालन से जुड़े हैं या फिर गाय पालन से जुड़े हैं, सुकर पालन से जुड़े हैं, ये ज्यादातर अभी हरा चारा देते हैं कि हरा चारा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन इस समय ध्यान देना चाहिए कि पशुओं को संतुलित आहार भी देना बहुत ही जरूरी है, और संतुलित आहार पशु को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, बीमारियों से बचाता है। तो संतुलित आहार में दाना मिश्रण तो देना ही देना है, साथ ही साथ अगर आप हरा चारा दे रहे हैं तो अच्छी किस्म का हरा चारा आप दें, लेकिन हरे चारे के साथ सूखे चारों को अवश्य मिलाएं, और जो भी सूखा चारा दे रहे हैं उस वो भी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। हरा चारा भी पहले का कटा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश काट करके देते हैं, सूखे चारे के साथ मिक्स करके दें। साथ ही साथ दाना मिश्रण भी बहुत ही जरूरी है। जैसे गाय में आप दे रहे हैं तो प्रति 2.5 से 3 किलो पर 1 किलो दाना मिश्रण होना चाहिए। बकरियों में भी अगर जो दूध देने वाली बकरियां हैं या गर्भवती बकरियां, उसकी थोड़ी मात्रा में दाना मिश्रण देना चाहिए। साथ ही साथ इस समय जो आप आहार दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर आप अवश्य मिलाएं, डॉक्टर की सलाह लेकर के लगभग 100 किलो में 1 किलो मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, या फिर एक छोटा चम्मच प्रति पशु जो है हर दिन मिनरल मिक्सचर देने से क्या होता है कि जो शरीर की आवश्यकता होती है पशुओं को वो पूरा हो जाता है, जिससे पशुओं की उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता में कमी नहीं आती है।
8: और पानी कैसा, स्वच्छ पानी देना चाहिए?
9: बिल्कुल, पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बरसात के मौसम में दूषित पानी पीने से बहुत जल्दी पशु बीमार होते हैं, तो बाहर में जो पशु अगर चरने के समय में भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का जहां जमाव होता है उसको पानी पीने से बचाएं। साथ ही साथ जहां पे आवास है वहां पे 24 घंटे स्वच्छ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, बरसाती पानी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा पानी, और जो बर्तन में पानी पिलाते हैं वो भी बिल्कुल नियमित रूप से प्रतिदिन उसको रगड़ करके साफ करना है कि कोई तरह का उसमें फंगस वगैरह का ग्रोथ नहीं हो।
8: बरसात में पशुओं में कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां होती हैं?
9: इस समय बीमारियों का मौसम भी कहते हैं बरसात में, और प्रमुख बीमारियों की यदि बात करते हैं तो अलग अलग पशुओं में अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। इसमें बकरियों में देखा जाए तो पीपीआर, इंटेरोटॉक्सिमिया, ये दो काफी प्रमुख बीमारी है। पीपीआर का लक्षण हमारे किसान भाई जानते होंगे, नाक से पानी आना, तेज बुखार आना, तेजी से बीमारियों का फैलना, और इंटेरोटॉक्सिमिया जो बीमारी है उसमें पशु अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, स्वस्थ पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए दोनों के लिए टीका बाजार में उपलब्ध है। बरसात से पहले या अभी भी आपने नहीं लगाया है तो इसका टीकाकरण अवश्य कर दें। पीपीआर और इंटेरोटॉक्सिमिया दो बीमारी है, इसका टीकाकरण करें। उसी तरह गाय, भैंस, बैल अगर है तो उसके लिए HS, BQ, FMD, ये तीन बीमारी होती है। HS को गला घोटू कहते हैं, BQ को लंगड़ी बुखार कहते हैं, और FMD को खुरहा बीमारी कहते हैं। तो ये तीनों बीमारी का एक ही वैक्सीन भी बाजार में उपलब्ध है, रक्षा ट्रायोवैक के नाम से आता है, तो उसका भी टीकाकरण आप करके एक ही टीका करेंगे तीनों बीमारी से बचाव हो सकता है। उसी तरह सूकरों में स्वाइन फीवर की बीमारियां होती है तो इसका भी टीकाकरण अवश्य कर दें। मुर्गियों में देखा जाता है, जो किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं तो उसके लिए रानीखेत इस समय काफी महत्वपूर्ण बीमारी है, उसका टीकाकरण अवश्य कर लें। इसमें पानी में मिला करके भी अगर उसको टीका को देते हैं मुर्गियों में तो भी टीकाकरण हो सकता है उससे।
8: अक्सर किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि पशु बीमार हो गए, तो अगर बीमार हो गए तो पशुएं तो क्या करेंगे हमारे किसान भाई?
9: बीमारियां जब होती है बरसात के मौसम में या कभी भी, तो सबसे पहले बीमार पशु की पहचान करनी चाहिए हमारे पशुपालकों को, और बीमार पशु की जो पहचान करते हैं उसके लिए उसके लक्षण के हिसाब से पहचान करते हैं। जैसे सुस्त हो जाना, खाना पीना नहीं खाना, भीड़ से अलग होना, शरीर का तापमान बढ़ना, आंख से पानी आना, ये सब लक्षण दिखने को मिलते हैं। तो ये सब लक्षण देखकर तुरंत किसान भाई को पहचान करना चाहिए कि हमारे पशु बीमार हैं। तो पहले क्या करना है कि वैसे पशु को बिल्कुल अलग कर दें और अलग से उसमें देखें कि क्या समस्या है, उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेकर के उसको आप इलाज करें। दूसरी चीज है कि यदि पशु बीमार होते हैं तो ये मत समझे कि टीकाकरण नहीं करने से बीमारी हो गई या टीकाकरण कर देते हैं। बीमार पशु में कभी भी टीकाकरण नहीं करना है, स्वस्थ पशु में करना है। तो बीमार पशु को पहले इलाज करें और बीमार पशु जब स्वस्थ हो जाए तभी उसमें टीकाकरण करना है।
8: कुछ सरकार की तरफ से बीमाएं भी होती हैं पशुओं की?
9: जी हाँ, बीमा होती है, वो सरकारी जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बैंक के द्वारा भी बीमा कंपनियां जुड़ी होती है, तो जो भी किसान भाई जो सरकारी सुविधा या लोन ले रहे हैं तो पशुओं का बीमा कराना होता है, तो वैसे बीमा कंपनियों से संपर्क करके और पशु का बीमा अवश्य कराएं। लेकिन बीमा में भी आपको बिना टीकाकरण किए अगर पशु है तो उसमें भी बीमा का लाभ नहीं होगा, तो आपको टीकाकरण करना होगा। और अचानक किसी कारण से मृत्यु होती है तो उससे बीमा से उनको फायदा होगा और उसको पैसा उनको मिलता है।
8: सही बात है किसान भाई, तो आप लोग बीमा अवश्य कराएं, पर टीकाकरण ही बहुत जरूरी है। बरसात में कृमिनाशक क्यों आवश्यक?
9: इस समय जो हमने अभी बीमारियों की बात की तो उसमें एक परजीवी बीमारी भी पशुओं में होता है। ये दो तरह का होता है, एक अंतः परजीवी एक बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी जो पेट के अंदर होता है और बाई परजीवी जो शरीर के ऊपर होता है। तो अंतः परजीवी दिखता नहीं है लेकिन ये पशुओं में ज्यादा नुकसान करता है, तो इसीलिए पशुओं में समय समय पे अंतः परजीवी नाशक दवा अवश्य लेना चाहिए। इसमें अल्बेंडाजोल फेनवेंडाजोल नामक दवा बाजार में उपलब्ध है। आप डॉक्टर की सलाह लेकर के जो वैसे पशु जिसको नियमित रूप से चराने के लिए ले जाते हैं हर 3 से 4 महीने में एक बार अंतः परजीवी नाशक दवा अवश्य दे दें। और अगर घर में बंद करके रख रहे हैं बाहर नहीं निकाल रहे हैं वैसे पशु को 5 से 6 महीने में एक बार अंतः परजीवी नाशक अवश्य की दवा दे दें। बाई परजीवी का लक्षण है कि बाल का झड़ना, उसमें दाना हो जाना, शरीर पे खुजली होना, ये सब बाई परजीवी का लक्षण है। और ये पिस्सू किलनी मक्खी मच्छर इससे होता है, बहुत सारी बीमारियां भी ये फैलाती है। तो इससे बचाव के लिए बाई परजीवी नाशक बहुत सारे दवा बाजार में उपलब्ध हैं। आप डॉक्टर की सलाह लेकर के इसको आप बाई परजीवी नाशक दवा अवश्य दे दें। और बाई परजीवी फैलने का मुख्य कारण है कि आवास का गीला होना, मल मूत्र का वहां पे जमा होना, तो इसलिए उसको साफ सफाई रखना चाहिए। मल मूत्र को आवास से दूर जाकर के रखें और नजदीक में उसको न रहने दें। साथ ही साथ बीच में कृमिनाशक दवा जैसे ब्लीचिंग पाउडर, चूना, फिनाइल आदि का छिड़काव करते रहें और उससे सफाई करते रहें।
8: बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल हम किस तरह कर सकते हैं?
9: इस समय दुधारू पशु में दूध देने की क्षमता अगर ठीक से देखभाल नहीं करते हैं तो कम हो जाती है, पशु बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए संतुलित आहार पहले देना जरूरी है, आवास बिल्कुल साफ सुथरा सूखा रखें और दाना मिश्रण बहुत ही जरूरी है संतुलित आहार में। जो गाय जितना दूध दे रही है प्रति 2.5 से 3 किलो पर 1 किलो दाना मिश्रण देते हैं। साथ ही साथ हरा चारा इस समय अगर बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है तो सूखा चारा के साथ मिलाकर हरा चारा भी भरपूर मात्रा में आप पशुओं को दे सकते हैं। साथ ही साथ साफ स्वच्छ पानी भी अवश्य नियमित रूप से दें।
8: अचानक कोई अगर पशु बीमार पड़ जाए तो किसान भाई क्या करें?
9: इस समय अगर कोई किसान भाई जो है अगर पशुपालन कर रहे हैं, पशु बीमार होता है तो सबसे पहले उसके लक्षण देख करके और उसको अलग कर दें। और आप देखें कि सबसे पहले उसको अलग करने के बाद क्या लक्षण आ रहा है उस हिसाब से आप उसको इलाज करना है और इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर बुखार हो रहा है तो उस हिसाब से डॉक्टर से बात करके सलाह लेकर के आप उसका इलाज करें। और साथ ही साथ उसको अलग रखने से क्या होगा कि उचित देखभाल कर सकते हैं और अलग रखने से बहुत सारे जो बीमारियां संक्रमण वाली जो बीमारियां होती हैं तो ये बीमारियां दूसरे पशु में नहीं फैलेंगे। और वैसे बीमार पशु को अलग से देखभाल, पहले स्वच्छ पशु को देखभाल कर लें उसके बाद लास्ट में उसको दाना पानी या उसके साथ में आप जो है उसकी देखभाल करें जिससे बीमारियां फैलेंगी नहीं और आपको इलाज का पूरा समय मिलेगा।
8: किसान भाइयों, आज आपने जाना कि बरसात के मौसम में पशुओं की समुचित देखभाल और बीमारियों से बचाव के उपाय के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
9: जी। नमस्कार।
7: तो एखन हमरे मन सुनत रही आज कर बात में बरसात कर मौसम में पशु मन कर समुचित देखभाल और बीमारी से बचाव करे के लिए उपाय और इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार और इनकर से गोठियात रहे मनोज कुमार।
6: हाँ भाई, जानकारी तो बहुत नगद रहे और देखो जानकारी कर संगे संगे रीझ रंग करे भी जरूरी है, काले की सारा थकान उतर जाए ला है नहीं।
7: एकदम। तो कृषि गीत में नागपुरी लोक गीत देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल गीत के चलो सुनी ला।
6: हाँ।

0: एखन हमरामन सुनले नागपुरी में कृषि गीत देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल। अब नई उम्र की नई फसल में सफल महिला किसान पुष्पा देवी से गुठियाल गोइट के सुनिला। इनकर से बतियाए हैं अरविंद मिश्रा।
1: सुनवैया सब भाई बहन मन के हमर बटले बहुत बहुत जोहार। भाई बहन मन देखो, खेती बाड़ी कर काम हमरे मन जैम के करीला और सब कोई मिलजुल के हमरे मन खेती बाड़ी कर काम करेला। लेकिन जब किसान कर बात आवेला नी तो हमरे मन कर ध्यान में खाली पुरुष समाज कर बात आवेला। हमरे मन कभी अंदाज नहीं करेला कि खेती बाड़ी कर काम में जितना पुरुष मन कर भूमिका रहेला उकर से कहीं ज्यादे महिला मन कर भूमिका रहेला। कहल जाला नी कि बेगर घर नी घर सुनसान है, उसने बेगर महिला कर खेती बाड़ी भी सुनसान है। तो आज रोड के एक ठो ऐसा सफल महिला से हम भेंट करवाए वाला है जे की खेती बाड़ी में जैन के खेती करत है और आज बहुत सफल हो चुकी है। कह धाव तो इनके खेती बाड़ी चलते पुरस्कृत भी करल जाए। तो चलो देरी नहीं करके इनकर से हमरे मन भेंट करीला, इनकर नाव के जानीला, इनकर परिचय के जाना थी, कहाँ कर रहे वाला है से हो हमरे मन जानब। बहिन जोहार।
2: जोहार।
1: पहले तो परिचय दे दो, कहाँ कर रहे वाला है और नाम का होलक।
2: हमर नाम पुष्पा देवी हके और हम पिठोरिया गांव कर रहे वाले हके।
1: बहुत बढ़िया। पिठोरिया गांव रांची जिला कर एक ठो ऐसा गांव है जहां एक ले एक किसान मन है। तो पुष्पा देवी पढ़ाई लिखाई हम जाने खोजब कतना तक रूढ़े पढ़े पाई रही।
2: हमर पढ़ाई लिखाई तो मैट्रिके तक भेलक है और उकर बाद हमर शादी कर दिला।
1: तो उकर बाद से रूढ़े खेती बाड़ी में जुटल।
2: हाँ, ससुराल रहली तो वहाँ खेती बाड़ी करत रह।
1: तो लगभग कतना साल का रोर अनुभव है खेती बाड़ी में?
2: करीब 30 साल।
1: 30 साल से रोड़े खेती कर रही। तो कैसे खेती बाड़ी में कैसे उतर ली रोड़े?
2: खेती बाड़ी ससुर घर में करत रहा है तो देख देख के सीख ली, फिर संगे संग जात रही करे।
1: तो घर का काम है के तो हाँ। करके है सबके मिलजुल के।
2: तो मिलजुल के करत रही सब कोई। हाँ, जैसन हाँ। समय रहे तैसन करत रही।
1: तो पहले तो देखो बड़ा पारंपरिक तरीका से खेती बाड़ी होत रहे, अब तो युग बदलते जाते, तो कितना बदलाव खेती में? अलग
2: बदला तो अलग। अब एखन ऐसा है कि लेबर मन नहीं मिला ना, तो दिक्कत होवेला। सेले आजकल मल्चिंग खेती लगा है ना।
1: अच्छा।
2: तो कर में निकौनी कोड़ौनी सब कम लागेला खर्चा, खाली तोड़े खोटे रहेला।
1: अच्छा।
2: और पटेला, पटेक में भी साथी दिक्कत नहीं होवेला पानी पटाए में।
1: आउकर में फायदा बगरा है?
2: हाँ, फायदा बगरा है।
1: तो रोड़े बगरा खेती कौन सी कर करीला?
2: सीजन सीजन में होवेला खेती। जैसे अभी बरसात है तो लर फसल लागी और जाड़ा सीजन आवे तो टमाटर बैगन गोभी सब बंधा गोभी सब लागी। इस तरह से
1: तो बगरा मतलब सब्जी कर खेती करीला।
2: हाँ, बगरा तो गोभी कर सब्जी होवेला।
1: तो कितना ठाव है रोड अपन जेकर में रोड़े खेती बाड़ी कर काम करत थी?
2: हमर ठाव तो ज्यादा नख है, 2 एकड़ जैसा है अखन। बाद बाकी में बनिहार के चलते दे दही साझा उजा।
1: लेकिन 2 एकड़ है जेकर में रोड़े अपन से करी
2: से के करी ला, धान खेती भी करी ला।
1: सब्जी कर में अखन कौन कौन सी रोई?
2: सब्जी में अखन करेली है, बोली है, फरसबीन है, भिंडी भी लगाई।
1: जिसन की रोड़े बतात रही कि रोड़े आधुनिक खेती कर रही, पारंपरिक खेती के लगभग अब छोड़ चुके हैं किसान मन। तो आधुनिक खेती में रोड़े कहली कि मल्चिंग और का तौर तरीका अपनाई ला खेती के बढ़िया उत्पादन लेवे के वास्ते?
2: खेत के पहले गर्मी दिन में जोतवा के खाद डलवाए ला सीमित से, जे चीज कमी है उके पूरा करी ला। जे खाद गोबर देवी ला, जैविक खाद देवी ला, चूना देवी ला, और के बढ़िया से गर्मी दिन में 2-3 बार जोताई करी ला, खेत के तैयार करी ला।
1: माने पहले से तैयारी शुरू?
2: हाँ,
1: कर दे
2: पहले से तैयारी,
1: मतलब फसल चक्र रूड़े हाँ, अपनाई ला। हाँ, खेत के खाली कभी नहीं छोड़ी?
2: खेत के खाली नहीं कर। खाली हाँ, कब होगी? जब के फिर जोताई करो, उसमें खाद उद डाला, खाली रही 2 महीना।
1: अच्छा। तो कहा थी जैसन की खाद उद कर बारे में बात कर ली, तो बगरा कैसन खाद देवी ला? जैविक खाद कर प्रयोग करेला की रासायनिक खाद के देवी ला?
2: नहीं, जैविक खाद और गोबर खाद का ज्यादा प्रयोग करेला। रासायनिक खाद तो मिलवो नहीं करेला, बहुत कम यूज करेला कर।
1: तो जे किसान मन सुनत है उमन के रोड़े का कहे खोजी लग?
2: यही कहब कि गोबर खाद चाहे जैविक खाद से अपन खेती बाड़ी करे।
1: और देखो रोरे बहुत पुराना किसान ही, 30-40 साल का रोर अनुभव है खेती बाड़ी में। तो हम रोर से जाने खोजब जाते जाते कि कभी रोर के खेती बाड़ी में कभी पुरस्कृत करल जाए?
2: पुरस्कृत प्राइज उराइज मिलना के
1: कहाँ मिल रहे?
2: बिरसा कृषि है ना।
1: हाँ हाँ,
2: वहाँ पर
1: मेला लागे ला।
2: हाँ, मेला लागे ला, तहाँ लानत रही सब्जी के, तो वहाँ बहुते सामान मिलत रहे।
1: अच्छा
2: फर्स्ट सेकंड थर्ड सभे मिलत रहे।
1: वाह, मैंने सब जीत चुकी खेल में। बगरा फायदा कौन फसल में रोके बुझाएला कि जेके करले कम खर्चा में बगरा उत्पादन होवे?
2: सबसे बढ़िया तो पत्तेदार सब्जी है, जैसे पालक है, धनिया है, ये सब में कम खर्चा में ज्यादा पैसा है
1: और बहुत जल्दी हो
2: जल्दी हो।
1: हाँ। कोबी बहुत ज्यादा उत्पादन करी ला, तो उकर में कैसा फायदा बुझाएल?
2: कोबी में तो फायदा है लेकिन लागत भी ज्यादा है, क्योंकि चाले पड़े ला दू धाम तीन धाम, फिर खाद डाले हुए ला, दवाई डाले हुए ला, बिना दवा के कोबी नहीं उपजी।
1: और उत्पादन बगरा लेवे के वास्ते रोड मन का करी ला, जिसे बहुत किसान मन तो परेशान रहे ना कि खेती करत है पैसा भी लागत है मुनाफा बगरा नहीं हुआ थे, तो रोड़े कैसे करी ला?
2: खेती के बढ़ावे ले पहले खेत में भिट्ठी देवी ला, उकर बादे जब बरसात आवेल तो भिट्ठी के फसकाए ला, उस घर से मिट्टी एकदम नरम रहेला, बिना पानी में रहेला, सूखल सूखल रहे, उकर में कोबी लगाब तो जल्दी उकर जड़ पकड़ा यार कोबी जल्दी जल्दी बढ़ी, उकर से हम इनके लागत कम लागे ला और फसल बढ़िया होवेला, तो फसल बढ़िया होवेला तो हम इनके मुनाफा भी बढ़िया होवी, बाजार में खाली उकर कीमत मिलना चाहिए।
1: तो पुष्पा देवी जी रोरे हमरे मन कर कार्यक्रम से जुड़ ली, अपन अनुभव के रोरे बता ली कि खेती बाड़ी कर काम रोरे कैसे करत थी, और बड़ा लंबा अनुभव रोर के है, खेती बाड़ी में रोर के पुरस्कृत भी करल जाए, सुन के बड़ा बढ़िया लागलक। तो रोरे खेती बाड़ी इसने जम के करते रहो, अपन क्षेत्र में रोरे नाम के बजाते रहो, रोरे कार्यक्रम से जुड़ ली, इतना अपन कीमती समय के दिली, इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद, लगे तब जोहार
2: जोहार।
3: तो एखन हमरे मन सुनत रही नई उम्र कर नई फसल में एगो सफल महिला किसान पुष्पा देवी से करल भेंट के, और इनकर से गोठिया रहे अरविंद कुमार मिश्रा।
4: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भाई, अब देखो इकरे संगे किसानवाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बता देवीला ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
4: और ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची कर।
3: अब संध्या बहिन कर संगे
4: विष्णु भाई के देवविदा
3: जोहार।

श्रोता सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, जहां से आप सुन सकेंगे संसद में हुई आज की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम संसद समीक्षा।

पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया।
सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने एक मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों

मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीए के सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालूल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन

0: राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। यह विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है, हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है, साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 8:15 और 10 सेकंड हुए हैं। वक्त हो चला है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत सुनने का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी चाहत, बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे तमाम संगीत प्रेमी श्रोताओं को अशोक का प्यार भरा नमस्कार आदाब। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन। आगाज कर रहे हैं आज

देखिए इस कार्यक्रम का फिल्म आप आए बाहर आई। जी हाँ, बारिश के आने से वैसे भी बाहर आ चुकी है और चारों तरफ खुशनुमा माहौल है। मोहम्मद रफी साहब के स्वर में ये खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। खरसावां झारखंड से आप हैं शुक्र नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और राकेश नायक। इंद्रपुरी से आप हैं दिलीप ठाकुर और अरविंद ठाकुर। अम्बेडकर नगर खपरियावां से आप हैं लखनदास, बेबी कुमारी, शनि कुमार एवं रोशनी कुमारी एवं उनके परिवार के समस्त सदस्य। विकास उर्फ टोनी, कोनी, आशा, स्वीटी और अपूर्वा एवं अभिषेक ने भी खपरियावां से ही इस गीत की फरमाइश लिख रची है। मुनका बगीचा हजारीबाग से विवेक कुमार सिन्हा, आराध्या और उनके परिवार के तमाम सदस्यों ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। तो भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट या फिर मोबाइल सेट पर आप इस कार्यक्रम को जहां भी सुन रहे हैं, लुत्फ उठाइए, एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत का।

आपके दीवाने जय श्रोताओ, अब इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के स्वर में। इस गीत को सुनाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने हमें खत भेजे हैं। पटेल नगर मालोट पंजाब से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया और गुड्डू। चपाकला बड़का गांव से हमारे ये नियमित श्रोता हैं बाबूलाल ठाकुर, साविया ठाकुर, तिलेश्वरी भर ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी और प्रियंका दीपिका। और ये खत आया है दिल्ली शहर मैरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का। तो आप सभी के फरमाइश पर भेज रहे हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक फिल्म आपकी दीवाने से।

कार्यक्रम आपकी चाहत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से अपने दोस्त अशोक के साथ। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत है इन सब श्रोताओं की पसंद पर। हमारे ये श्रोता हैं नया टोला भिखनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। जमाडोबा से हमारे ये श्रोता है मोहम्मद रफीक अंसारी, बेगम फरीदा एवं रफीक। और बड़काकाना से हमारे श्रोता है इफ्जाल ताज और उनके परिवार के समस्त सदस्य। और बड़काकाना से ही रेडियो श्रोता संघ से हमारे ये श्रोता है अशोक पासवान, सुधा पासवान, मंजू रेखा और उनके परिवार के समस्त सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है आक्रमण फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, इसे गाया किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों ने। और इस गीत में रफी साहब की भी आवाज है।

कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं, इन सब श्रोताओं के पसंद हम आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं। हमारे ये श्रोता हैं छत्तीसगढ़ शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पोंडरा से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा कुमारी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और मालोट कैंप से आप हैं सतीश मिलखानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी और लखविंदु सिंधु, महावीर संधु और गुरुचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इन सब श्रोताओं ने सुनना चाहा है जाग उठा इंसान फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं।

शुदों किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए जाग उठा इंसान फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का आपकी चाहत का सफर यहीं पे हम थाम रहे हैं। अनुमति दीजिए अशोक को। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी चाहत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। 8:45 होने को हैं। अगला कार्यक्रम, अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या और News@9 के आज के अंकों, और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट्स, और 9:30 से 10 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। तो कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता

0: दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। यह 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। यह सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
5: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
6: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
5: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
7: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
9: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले दो वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई

0: उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test-fires medium-range Agni 4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731.

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म खिलौना के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: यह है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो वो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे संगीतकार को जो अपने कॉलेज के जमाने में अच्छे क्रिकेटर रहे थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जाने की बजाय वो आ गए फिल्मी दुनिया के मैदान में और बन गए संगीतकार और निर्देशक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है जाने माने संगीतकार, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज पर।

0: बेटा है जी।
1: विशाल भारद्वाज का जन्म हुआ था बिजनौर उत्तर प्रदेश में। उनके पिता राम भारद्वाज एक जाने माने कवि और गीतकार थे। विशाल की शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। अपनी जवानी के दिनों में विशाल भारद्वाज कुछ गुमनाम गजल गायकों के लिए हारमोनियम बजाया करते थे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स में उन्होंने अपने प्रोग्राम किए। आगे चलकर आरवी पंडित से उनकी जान पहचान हुई और इस तरह से विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक कंपनी में आ गए। एक दोस्त ने विशाल भारद्वाज का परिचय जाने माने गीतकार और निर्देशक गुलजार से करवाया।

उसके बाद विशाल ने जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड और गुच्छे जैसे कई सीरियल्स में गुलजार के लिखे गानों को स्वरबद्ध किया। जंगल बुक का टाइटल गीत तो आपको याद ही होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद जब गुलजार बना रहे थे फिल्म माचिस, तो बतौर संगीतकार उन्होंने विशाल भारद्वाज को साइन किया। फिल्म माचिस का संगीत एकदम अलग तरह का था, ये एक ताजगी भरा संगीत था। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे ये गाना।

इन सभी गानों को सुनकर लगता नहीं है कि किसी नवोदित संगीतकार की रचनाएं हैं ये। और फिर गुलजार के गानों को स्वरबद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात तो जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन पहले ही कह चुके थे। जाहिर है कि विशाल भारद्वाज ने कई चुनौतियों के बीच काम करके अपने आप को साबित किया। विशाल भारद्वाज की दूसरी बड़ी फिल्म थी

सत्या के बाद विशाल भारद्वाज ने कमल हासन की फिल्म चाची 420 में भी संगीत दिया और कई अलग अलग फिल्में उनकी आईं। लेकिन जिस फिल्म का संगीत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सुना गया वो थी एक बार फिर गुलजार की फिल्म हू तू तू। इस फिल्म का छई चप छई गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था।

इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सोचा कि वो संगीत की दुनिया से फिल्म निर्माण की दुनिया में आ जाएंगे और फिर उन्होंने साल 2002 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मकड़ी। शबाना आजमी के अभिनय वाली इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण और इसके अलावा संगीत, ये सारी जिम्मेदारियां खुद विशाल भारद्वाज ने संभाली थी। इसके बाद वो फिल्मी दुनिया में बाकायदा चले आए और उनकी निर्देशित पहली बड़ी फिल्म कहलाई मकबूल। मकबूल के बाद विशाल भारद्वाज ने एक और फिल्म का निर्माण किया। ये बच्चों की फिल्म थी और रस्किन बॉन्ड की कहानी पर आधारित थी। ये फिल्म थी द ब्लू अम्ब्रेला। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने एक धमाकेदार फिल्म बनाई। ये फिल्म थी ओम।

इस दौरान विशाल भारद्वाज का संगीत देने का काम लगातार जारी रहा और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में आईं, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा।

विशाल भारद्वाज के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई के दिनों में विशाल भारद्वाज की मित्र बनी रेखा, जो अब उनकी पत्नी और फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी गायिका हैं। रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनिए ओमकार।

विशाल भारद्वाज की फिल्में बड़ी अनूठी हुआ करती हैं। वो फिल्मी दुनिया के सामान्य चलन से अलग हटकर अपनी फिल्में पेश करते हैं। जैसे फिल्म कमीने एक अलग तरह की कहानी थी और इसका संगीत भी अपने आप में बिल्कुल अलग था।

आपको बताएं कि विशाल एक अच्छे गायक भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विशाल कितनी बहुमुखी प्रतिभा है। एक तरफ संगीत देते हैं, दूसरी तरफ कथा पटकथा संवाद लिखते हैं, निर्माण निर्देशन भी करते हैं और गायक भी हैं। जी हाँ, फिल्म यू मी और हम का ये गाना सुनिए।

अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म निशब्द की गानी विशाल भारद्वाज ने तैयार किए थे। फिल्म हाले दिल का ये शीर्षक गीत सुनिए, कमाल का गाना है ये और विशाल भारद्वाज की प्रतिभा को अच्छी तरह से दर्शाता है।

अब विशाल भारद्वाज निर्माता भी बन चुके हैं और अपनी कंपनी के जरिए नई प्रतिभाओं को उतार रहे हैं। जैसे कि विशाल भारद्वाज ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाई है इश्किया। फिल्म इश्किया के गाने भी गुलजार ने ही लिखे हैं और इनका संगीत खुद विशाल ने तैयार किया। जरा इब्ने बतूता सुनिए।

साल 2013 की शुरुआत विशाल भारद्वाज ने की अपनी एक दिलचस्प फिल्म के जरिए, जिसका नाम था मटरू की बिजली का मंटोला। इस फिल्म का ये दिलचस्प गाना सुनिए, विशाल भारद्वाज की जीवन संगिनी रेखा भारद्वाज ने।

विशाल भारद्वाज लेकर आए एक बड़ी ही चर्चित फिल्म जिसका नाम है एक थी डायन। विशाल भारद्वाज अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी गिनती हिंदी फिल्म उद्योग के संवेदनशील निर्देशकों में होती है। साल 2014 में विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर की कृति हैमलेट पर बनाई अपनी फिल्म हैदर 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

विशाल भारद्वाज की एक और फिल्म आई डेढ़ इश्किया, जो इश्किया का सीक्वल है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक अभिषेक चौबे, निर्माता विशाल भारद्वाज, संगीत भी विशाल का ही।

विशाल भारद्वाज एक संगीतकार होने के साथ साथ एक निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने फिल्म तलवार का निर्माण भी किया और इसकी कहानी भी तैयार की। आपको बता दें, फिल्म तलवार का निर्देशन जाने माने शायर, निर्माता, निर्देशक और लेखक गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने किया था और फिल्म तलवार ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार हासिल किए थे। पिछले दिनों आई निशिकांत कामत की फिल्म दृश्यम में विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया था। इसके अलावा फिल्म जुगनी में विशाल भारद्वाज ने ये गीत

विशाल भारद्वाज बहुत ज्यादा फिल्मों में संगीत नहीं देते। आजकल वो उन फिल्मों का संगीत निर्देशन कर रहे हैं जिन्हें या तो उन्होंने प्रोड्यूस किया है या फिर उनका निर्देशन उन्होंने किया है। लेकिन पिछले दिनों एक फिल्म में उन्होंने कुछ गाने बनाए। ये फिल्म थी मदारी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार विशाल भारद्वाज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: कार्यक्रम रजनीगंधा सुन रहे सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं को अशोक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की रजनीगंधा में होगी दिल की बातें दिल से।
1: नहीं।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सुन रहे हैं दिल की बातें, और ऐसे गीतों को हमने शामिल किया है जिसमें दिल शब्द का उपयोग हुआ है ज्यादातर गीतों में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दिल शब्द गीत में आए ही कुछ समझने वाली भी बातें होती है। आइए बाकी के गीतों को सुनकर इस शाम को और भी सुरीली बना दें।

दोस्तों, एक बार जब उनकी मूरत या सूरत दिल के किसी कोने में बस जाती है तो लबों से सिर्फ और सिर्फ दिल की बातें ही निकलती है, और यही है हमारे आज के

दोस्तों, तो दिल की बातें अब यहीं तक। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। श्रोताओं, हमको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गीतों को शामिल किया उनके नाम इस प्रकार हैं: 10 नंबरी, 9211, ब्रह्मचारी, फकीरा और अनुरोध एवं मुकद्दर का सिकंदर। अब आज के इस कार्यक्रम से अशोक को अनुमति दीजिए। नमस्ते।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम आज के फनकार बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम में हमारे आज के फनकार है भारतीय सिनेमा के जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी साहब का नाम ऐसे गीतकारों की सूची में शुमार है जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने कलम के जादू से

शतो मजरूह सुल्तान। पुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश इंडिया के समय में, उसमें हमारे देश गुलाम था, सुल्तानपुर में हुआ था। और मजरूह साहब का नाम के आगे रूह जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कलम से जो भी शब्द गीतों की शक्ल में तब्दील होते थे वो हमारे सीधे रूह में उतर जाया करते थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने 50 से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों में के लिए गीत लिखे। आजादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई गए थे। तब उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता करदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का अवसर दिया था। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता के द्वारा किया गया था। इस फिल्म के गीत प्रसिद्ध गायक कुंदनलाल सहगल ने गाए थे। ये गीत थे गमे दिल, मुस्तकिल और जब दिल ही टूट गया, जो आज भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। इनके संगीत का नौशाद साहब थे।

हैं और आज के हमारे फनकार हैं भारतीय सिनेमा में अपने कलम के जादू बिखेरने वाले मजरूह सालम साहब यानी कि मजरूह सुल्तानपुरी, जिन फिल्मों के लिए आपने गीत लिखे उनमें से कुछ के नाम हैं सीआईडी, चलती का नाम गाड़ी, 9-2-11, तीसरी मंजिल, पेइंग गेस्ट, काला पानी, तुम सा नहीं देखा, दिल देके देखो, दिल्ली का ठग आदि। पंडित नेहरू की नीतियों के खिलाफ एक जोशीली कविता लिखने के कारण मजरूह सुल्तानपुरी को सवा साल जेल में रहना पड़ा। 1994 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व 1980 में भी उन्हें गालिब अवार्ड और 1992 में इकबाल अवार्ड भी प्राप्त हुए और इनका जो वर्ष रहा भारतीय सिनेमा में वो 1946 से 2000 तक भारतीय सिनेमा में वो सक्रिय रहे और 24 मई सन 2000 को 80 वर्ष के उम्र में मुंबई में इनका निधन हो गया। तो ये थी मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में कुछ जानकारी। एक काबिल और सुप्रसिद्ध शायर और शानदार कलम के जादूगर। कुछ और गीत आपके लिए पेश कर रहे हैं।

गीत आपको सुना रहा हूं वो सिर्फ गीत ही नहीं, एक सपना था जो मेरी पत्नी और मैंने मिलकर देखा था। बदकिस्मती से वो सपना चूर चूर हो गया।

दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ अब आज का आज के फनकार कार्यक्रम समाप्त होता है, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी पर। अब आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अपने दोस्त अशोक को फिर मिलेंगे, इस वादे के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।

तो सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय

0: नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both houses of parliament witnessed repeated adjournments following